0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें ग्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

तुझे तुझे

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद मोबाइल नंबर 7055070552

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
0: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: कॉल 9045912348।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: कोई फूल चढ़ाने जाता है,
1: कोई छप्पन भोग लगाता है,
0: छप्पन भोग लगाता है,
1: कोई छप्पन भोग लगाता है,
0: छप्पन भोग लगाता है।
1: लेकिन खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत, सबको खुश रखने वाले का,
0: वो खुश रखने वाले का।
1: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलनिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है। लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है। बाबा बोलता है तू मेरा है।

मंच पे मैं खड़ा हूँ। मेरे बाद विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं।

अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माता जी मिली। मैंने उसको पूछा, माता जी कहां जा रहे हो? बोली मैं वहां जा रही हूं जिसके भजन कन्हैया मित्तल गाता है। तो मैंने शब्द बदल दिए,

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
1: बहुत अच्छा हूँ। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
2: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊं, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
1: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
2: बिल्कुल।
1: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें संदेश पहुंचाकर दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: देखो यार, संडे का दिन है और आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो हम आ ही जाएंगे। 10:23 का समय, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। बंटी और बबली का गाना शंकर महादेवन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। आनंद के साथ हैं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ढेर सारी बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको मुझे मैसेज करना होगा 9837896896 पर, जहां बातें होंगी आपसे ढेर सारी। हां जी, कैसे हालचाल है? संडे की बहुत ही प्यारी ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। वेलकम बैक है आप सभी का, आप सुन रहे हैं आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक प्यारी सी सुबह आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, हाथ जोड़ के आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करता हूं मैं आपका, रेडियो वाला आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग है। अच्छा चलो, टाइम की बात करते हैं तो स्टेशन क्लॉक में 10:24 हुए हैं, और अभी तारीख की बात करें तो 12 जुलाई है आज। बहुत कुछ स्पेशल चल रहा है संडे की सुबह मुरादाबाद में। क्या चल रहा है लोकल फॉर वोकल में? कड़क सारी अपडेट और ढेर सारी गाने और बहुत सारी आपके साथ बातचीतों का जो ये सिलसिला है वो लगातार कंटिन्यू रहेगा 12 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस कड़ी में, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। 9837896896 पर जुड़िए ना मेरे साथ। कुछ अच्छे गाने होंगे, उसके बाद मेरी एंट्री होगी आपके ढेर सारे मैसेजेस के साथ। फटाफट अपने व्हाट्सएप पहुंचाओ मुझे, हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। ये संडे की सुबह है, बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, सूर्य देवता भी प्रकट हो गए। आप अपनी गर्म गर्म चाय के साथ एंजॉय करते रहिए बेहतरीन गाने। अभी लौट कर आएंगे तो करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बात स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, संडे वाली मस्ती। सुबह का टाइम 10:25 हो रहे हैं, तो बस आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मैं अभी लौट कर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी आपके साथ दिल से दिल तक। सो आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर गाइस। आनंद विद यू, थोड़ी देर में मिलता हूँ।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
8: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
2: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर

0: और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
1: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
0: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं, उसको शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं। सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
1: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
0: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
1: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
0: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
1: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है। चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
0: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
1: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है।
0: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? सॉरी यार, थोड़ा सा काम अर्जेंट आ गया था। वेल, वंस अगेन वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग, संडे की सुबह है। और देखो यार, 12 जुलाई हो गई, 10:53 हो रहे हैं। बड़े में क्या हाल चाल है जी? मैं कहा सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। चलो अच्छा ही चलना चाहिए, सब चकाचक होना चाहिए। चलो आप मुझे जरा फटाफट से मैसेज करो, कितने लोग हैं इस वक्त जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, फटाफट हेलो हाय की मैसेज करो यार। हाँ जी, कैसे हाल चाल है, कैसे जा रही है आपकी संडे की सुबह? ढेर सारी कड़क अपडेट है, बहुत सारी स्पेशल चीजें आज चल रही है हमारे आसपास। इनफैक्ट आज 12 जुलाई अपने आप में बहुत खास तारीख है। क्या कुछ स्पेशल है डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन मेरे पास ढेर सारे व्हाट्सएप पहुंच गए। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाय, मेरा नाम शिखा है। संडे को आप आते हो क्या? नहीं नहीं मैम, वो कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं चला आता हूँ, आपसे गुफ्तगू जो करनी होती है। थैंक यू वेरी मच आनंद, आपको सुन के अच्छा लग रहा है। आज संडे में आपकी एंट्री हुई है, बहुत मजा आ रहा है। सुबह सुबह संडे हमारा अच्छा हो गया। अरे थैंक यू सो मच यार। ये ललिता कश्यप जुड़ी है मेरे साथ, गुड वाला मॉर्निंग आनंद, कैसे हो? वेलकम, संडे मॉर्निंग में आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ललिता जी, ये लिखती है संडे में आपको सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, क्या बात है, नाश्ता कर लीजिए, हम तो नाश्ता करते करते ही आपका शो सुन रहे हैं, सॉन्ग सुनवा देना। अच्छा जी, क्या बात है, जीने के हैं चार दिन, आई लव दिस ट्रैक यार, आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। आपने तो मतलब आते ही एक भौकाल वाला गाना दे दिया है हमें, इतना धाकड़ गाना है, इसको सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज की सुबह। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की मॉर्निंग 9837896896 पे। यार इंतजार किस बात का कर रहे हो, हम है ना आपके साथ, फटाफट मैसेज करने का आपको 9837896896। देखो बहानेबाजी मत करो, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अपना फोन उठाने है, उसके बाद सीधा अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाना है, ठीक है? सो हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का 9837896896 पर। अगर आप व्हाट्सएप करोगे मजा आएगा यार मुझे। ढेर सारे मैसेजेस की जो लड़ी है वो लग चुकी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? हेलो हेलो हाय, नाइमुल अकरम मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। गुड मॉर्निंग आनंद जी, हाय टीना, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, ये गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। इसके अलावा मेरे पास गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है यहाँ पर प्रियम का, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम गुड।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
6: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: कॉल 9045912348।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे संडे स्पेशल प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है। मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई है, हमारा आवागमन हो गया है। तो अच्छे गाने तो बनते हैं आज की मॉर्निंग। भैया मैं ये नहीं बोल सकता है, गलत गंदी बातें नहीं करते हम, अच्छी बातें करते हैं। फिलहाल आप मुझे मैसेज करिए 9837896896। आपकी संडे की सुबह कैसी जा रही है, कैसी शुरुआत हुई है आपकी, क्या कर रहे हैं आप, मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताओ। ये गाना किसकी रिक्वेस्ट पे आ रहा है, डेफिनेटली बताता हूँ इस गाने के उस पार।

हाँ जी, वेलकम बैक यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज 12 जुलाई है, अपने आप में बहुत ही स्पेशल वाइब है। ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाइस, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। 11:07 हो गए हैं। देखिए, वैसे तो खुशी आपको यहाँ मिलती है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ मिल रहा हूँ, ये अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच। वैसे ही गाने की रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पर आई थी प्रिया की, उन्होंने मेरे को बोला था आनंद एक गाना मुझे सुना दो, इश्क दी गली सुबह सुबह। मैं क्या, ठीक है जी, आप इश्क दी गली सुनो, एंजॉय करो इस गाने को। एंड अभी फिलहाल आप लोगों ने जो व्हाट्सएप किए उसके लिए दिल से आप सभी का थैंक यू वेरी वेरी मच, स्वागत है आप सभी का। और आज अपने यूपी का जो है एक बहुत ही स्पेशल दिन है आज। जी हाँ, आज की मैं बात करूँ 12 जुलाई की, आज स्पेशल क्यों है ये दिन मैं आपको बता दूँ। यूपी में आज बनेगा महारिकॉर्ड, एक दिन में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। एग्जैक्टली, अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है आज, और इनफैक्ट मुरादाबाद के लिए भी बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज। मुरादाबाद के भी अलग अलग कोनों में जो है आज वृक्षारोपण, पौधारोपण हो रहा है, और इसका कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। इवन अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा होगा, शाम तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर आप किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है एक पौधा, एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा आपको जो लगता है अगर आप कहीं पार्क में लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पार्क में नहीं लगा सकते हो तो अपने घर में ही एक छोटा सा खूबसूरत सा प्लांट तो डेफिनेटली आज के दिन आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़रूर है हमारा, हम सभी का। प्रकृति को सुंदर अगर बनाना है तो एक पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें भी टैग कर सकते हैं, अगर आप आज कहीं पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो ज़रूर उसकी फ़ोटो हमें भी भेजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर। अगर आप खुद इस कैंपेन में, इस इनिशिएटिव में जा रहे हैं तो भी आप मुझे अपडेट करिएगा मेरे व्हाट्सएप के जरिए 9837896896 के माध्यम से। आप मुझे जरूर बताइए अगर आप गाड़ियों में सुन रहे हैं, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कहीं नर्सरी नजर आ रही है तो पेड़ ज़रूर खरीदें, एक छोटा सा पौधा ज़रूर खरीदें, उसको अपने घर के आंगन में, अपने पास वाले पार्क में, जहां आपको लगता है आपको लगाना चाहिए, डेफिनेटली आप प्लीज़ ज़रूर लगाएं। और पेड़ लगाकर उसे छोड़े नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं, उस पेड़ को अच्छे से उसकी देख रेख भी करें। क्या बात है, एक मैसेज आया है, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं है, यह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। क्या बात है यार, बहुत ही प्यारा मैसेज हमारे पास पहुंच गया है यहां पर। थैंक यू संगीता जी अपना प्यारा मैसेज करने के लिए। संगीता वर्मा मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। जमाने का नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप जो है ना ये आपको बहुत कुछ याद दिलाने वाला है। हाँ जी, अब आप भूलेंगे नहीं किसी का, किसी कोई खास पर्सनालिटी आपकी लाइफ में और उसका बर्थडे। कई बार हम भूल जाते हैं, ऑफकोर्स यार भूल ही जाते हैं, हम AI हैं तो नहीं है, हम इंसान हैं जो सारी चीज़ें याद रखेंगे, है ना। इंसान के दिमाग में और भी बहुत सारी बातें होती, नहीं रख पाते। तो अब आप इसमें ना कैसे हेल्प ले सकते हैं, व्हाट्सएप आपकी हेल्प करने वाला है। अगर किसी खास पर्सन का बर्थडे, वो इंसान आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो उसका बर्थडे याद दिलाएगा व्हाट्सएप। एक नया फीचर आने वाला है व्हाट्सएप पर ऐसा, जो आपको आपके किसी खास पर्सन का बर्थडे याद दिलाएगा। कैन यू इमेजिन यार, कितनी अच्छी चीज होने वाली है। हाँ अच्छा, आपको क्या लगता है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है, आप मुझे जरा मैसेज करके बताइएगा आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या है। इंसान कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी लाइफ में उसको पता होता है कि आपको कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। जैसे मुझे लगता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ लगता है कि मैं ठीक हूँ, यस आई एम गुड। हम जब भी किसी से बात करते हैं, नहीं भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि उसके पास 100 चीज़ें चल रही होती हैं। हालांकि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसे तमाम सारी चीज़ें, ऐसे तमाम सारे झूठ हैं जो मुझे लगता है इंसान की जिंदगी में होते हैं, बट हम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लत लग गई झूठ बोलने की, छोड़ाओ इस आदत को आज ही। आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, संडे की सुबह। अच्छे गानों की लत और अच्छी बातों की लत लगती रहनी चाहिए। बताओ जरा, मैसेज करो, क्या लगता है आपको इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है, आपको क्या लगता है, आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करिएगा 9837896896 पर। हमारे साथ रिजवान खान साहब जुड़ चुके हैं आज की सुबह, ग्राम बिजरा से लिखते हैं, हेलो जी, हमारे यहाँ रात को तो बारिश हुई थी, अभी बहुत जो है गर्मी हो गई है भयंकर वाली। जिला मुरादाबाद ग्राम बिजरा से रिजवान खान साहब जी लिखते हैं, आनंद जी मुझे एक गाना सुनना है, तो डेफिनेटली हम आपके लिए गाना प्ले करेंगे, डोंट फरी यार, आप आनंद को सुनते रहो। डेफिनेटली आपने मैसेज किया है तो जरूर गाना आप तक पहुंचेगा। 11:11 हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टाइम हो गया, एंजल वाला टाइम, अक्सर मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूं। अगर आप घड़ी में देखेंगे तो 11:11 हो रहे हैं, मैंने आपको याद दिला दिया है। कोई विश मांगनी, क्रॉस योर फिंगर, मांग लो।

क्या बात है। देखो, अच्छी चीजों की लत मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लगती रहनी चाहिए। अगर अच्छी चीजें आपको लग रहा है कि उसकी लत, उसकी हैबिट आपको लग रही है, तो एक अच्छी चीज है। हाय, वेलकम बैक है। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आनंद को। संडे की सुबह है, देखिए टाइम हो गया है 11:15। स्टेशन क्लॉक में ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। 12 जुलाई की सुबह क्या कुछ खास है आज इतिहास के पन्नों में, चलिए एक नजर डालते हैं। आपको बता दें, 1998 में 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से आज ही हराया था। श्रोताओं, आज ही के दिन। एंड आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज अंचित शरद कमल, जो भारतीय टेनिस, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, 1982 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन जो है सुंदर पिचाई जी का भी जन्म हुआ 1972 में। एंड श्रोताओं, आपको बताते चलें, हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है और हर दिन किसी न किसी का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बिकॉज उन लोगों ने कुछ स्पेशल किया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देश के नाम दिया है, कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना, आज की सुबह से ही कुछ ऐसी शुरुआत कीजिए कि आने वाले टाइम में आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। कुछ तो ऐसा बेहतर से बेहतरीन कर डालिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं श्रोताओं। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर से बेहतरीन करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और आपको बताते चलें, आज के दिन नीलम प्रभा, जो भारत की जानी मानी लेखिका है, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। और आपको बता दें, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक रहीं दुर्गा प्रसाद जी, इनका भी जन्म हुआ था 1895 को आज के दिन। तो आज के दिन से जुड़ी एक छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ साझा करी। बाकी और क्या स्पेशल है आज के दिन इतिहास के पन्नों में, और आपको बता दें, भारत और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों के लिए आज का इतिहास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है श्रोताओं। आपको बताते चलें, आज का दिन और भी तमाम सारी बातों के लिए जो है फेमस है, पॉपुलर है, कौन कौन से स्पेशल और दिवस है जो आज सेलिब्रेट किए जाते हैं। आज के दिन तमाम ऐसे दिन हैं जो आज 12 जुलाई को मनाए जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आपको अब हम जरा थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं इसके अलावा और कौन कौन से नेशनल, इंटरनेशनल जो दिवस है वो आज सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि देखिए जानकारियों से ही हमारा प्रोग्राम और खूबसूरत हो जाता है। आज के दिन जो है पेपर बैग डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को हर साल पेपर बैग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है श्रोताओं। इसके अलावा आज नेशनल सिंपल सिटी डे, यानी कि सादगी से भरा दिन आज मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है, यानी कि बोले तो नेशनल सिंपल सिटी डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल डेज हैं जो आगे आगे ऑफ कोर्स हम आपको बताते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप भी हमारे साथ कुछ स्पेशल बात शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं 9837896896 पर। आपसे हम पूछ भी रहे हैं श्रोताओं, आप हमें बताएं आपके हिसाब से क्या लगता है इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा झूठ कौन सा होता है, आपको क्या लगता है? डू टेल 9837896896। इस नंबर पर आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। एंड अगर आप ये मैसेज करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। एंड अभी ढेर सारे लिसनर्स जो है अपनी रिक्वेस्ट मुझे पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें, आज अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को आधिकारिक तौर पर जो है आज के दिन नामांकित किया गया है श्रोताओं। ये आज का दिन बहुत ही स्पेशल होता है। तमाम जानकारियों के लिए आज का दिन तो देखिए है ही खास, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्ताओं और आशा बहनों के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत के कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, आज का दिन बहुत ही स्पेशल तरीके सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस, जितनी भी आशाएं जो घर घर जाकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं, तमाम सारी जानकारियां देती हैं, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन है आज का। बिग शाउट आउट जाता है ऐसे लोगों के नाम।
चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी जानकारी आपको देते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एक अच्छा सा गाना निकालते हैं एंड इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना और ये आप में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पे मैं प्ले कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप। 11:20 का समय हो रहा है। ऐसी और भी तमाम जानकारियां हैं जो लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी इसी स्टेशन के माध्यम से। और हमारी तो कोशिश होती है कि हम रेडियो पे गीत संगीत के साथ साथ वो तमाम जानकारियां जो कहीं ना कहीं आपके काम भी आए और आपको पता भी लगे, वो सब कुछ आपके लिए लेकर आऊं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। एक बहुत ही प्यारा ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे। आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। 12 जुलाई की सुबह है। मजे की बात तो यह है कि संडे का दिन है। ढेर सारा काम कूम करके मैं तो स्टूडियो में आपसे बहुत सारी बातें करने आया हूँ, लेकिन इस समय बहुत तेजी से भाग रहा है।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए,
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
9: वेलकम बैक है जी। आप में से किसी ने क्या गाना पहुंचाया है यार?

वैसे मजे की बात ये गाना आज मैंने भी अपनी स्टोरी पे लगाया था एंड आई डोंट नो कैसे इस गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच गई है। आप में से किसी ने पहुंचाया है अभी बताता हूँ कौन है जिसने इस गाने की रिक्वेस्ट डाली थी। हाय हाय हाय, चलो सुनते हैं साथ में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंतजार का हम मजा लीजिए। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 मेगा

बिल्कुल जी, आप जहाँ भी पहुँच रहे हैं मजे लेते लेते पहुंच जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, संडे की सुबह है एंड सच बता रहा हूं, मतलब मजा तो तब आ जाता है जब संडे हो और आप लेट उठ रहे हो, और बट अगर उसके अपोजिट हो जाए तो सारा मजा कैसे सजा में बदल जाता है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू। आज 12 जुलाई है, संडे की सुबह है, कैसे हालचाल है आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड पे हैं या कार रोड पे या हैं आप स्टेशन रोड पे, ऑल द वे बेस्ट आप जहाँ भी निकल रहे हैं। वीकेंड है ऑफ कोर्स यार, संडे का दिन मतलब छुट्टी का दिन, यानी कि फैमिली के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करने का दिन। और बहुत सारे ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जो संडे को कहते हैं जी देखिए मोहतरमा आज आपके लिए हम कुकिंग करेगा, आप मंडे टू सैटरडे हमारे लिए करते हैं, आज हम आप उनके लिए करेगा। क्या कहा आनंद, ऐसे तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं हस्बैंड ना, बट आपके वाले ऐसे हैं जी, मुझे पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, संडे की सुबह है, बहुत सारी बातें हो रही है, तमाम सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं आज की सुबह। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए, आप लोगों ने सच में बहुत अमेजिंग मैसेजेस किए हैं, जोरदार तालियां आपके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड ऑफकोर्स आज का दिन क्यों स्पेशल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड आप लोगों ने जो मुझे मैसेज किया ना उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त रूबीना जुड़ चुकी हैं दिल्ली रोड से, लिखती हैं आनंद जी आपका शो सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, मैन थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड इन्होंने लिखा है कोई ये गाना बढ़िया सा बजा दीजिएगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली गाना बजेगा। आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, एंड बता सकते हैं अपनी फेवरेट वाली वाइफ जो आपको लगता है कि मेरे स्टेशन पे डेफिनेटली होनी चाहिए आज की सुबह, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है यार। व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पर। प्लीज पानी पीते रहो यार, पानी पीना बहुत जरूरी है, ढेर सारा अपना ख्याल रखो, वीकेंड है संडे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पानी पीना भूल जाओ, तभी देखो पानी शानी पीते रहो यार।

चलिए गाइस, अब जो है आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं ना, एक छोटा सा सवाल करते हैं यहाँ पर। अगर आपने इसका जवाब दिया तो मेरे को बहुत मजा आएगा। मतलब एक छोटा सा बत्तीकुल मीटर चालू करने के लिए आपके दिमाग का छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगा यहाँ पर एंड आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा गाना है। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर नंबर एंड ऑफकोर्स आपने इसको बहुत बारी सुना होगा एंड मूवी भी डेफिनेटली आप में से कई लोगों ने देखी होगी। बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत ही प्यारी फैमिली पिक्चर थी एंड दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक। कौन सा ये गाना है आइडेंटिफाई करना है, चलिए आप मुझे मैसेज करके बताइएगा 9837896896 पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी, आप मुझे कहां से सुन रहे हैं एंड ये कौन सा गाना प्ले कर रहा हूं आज संडे की सुबह। व्हाट्सएप करना है चलो, मौसम इतना अच्छा है तो ऑफकोर्स यार आपके दिमाग के थोड़े घोड़े तो दौड़ने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी कसरत हो जाए और थोड़ी सी आपको नॉलेज शॉलेज मिल जाए। देखिए मेगा जी ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि आनंद जी हम भी आपको सुन रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को एकदम से फटाक से वीडियो कैप्चर करके भेज दिया। मतलब मेरा संडे ऑसम हो गया है। जब आपके खास लोग रेडियो सुनते तो और मजा आता है ना। वेल थैंक यू मेगा जी, अगर आप सुन रही तो ऐसे स्माइल करते हुए जहाँ भी आप जा रही हैं ऑल द बेस्ट, पहुंच जाइए अपनी रेसिपी पे। गाइज आप मुझे बताओ ये कौन सा गाना चल रहा है। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक है, संडे की सुबह है, ढेर सारे मैसेज जब आ जाने चाहिए। अगर आपने मैसेज नहीं किया तो आपको पाप लगेगा, मैं पहली बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इस जोक से बाहर आप मुझे व्हाट्सएप करो। जो अभी आपने गाना सुना है वो बेसिकली कौन सा गाना है, जो एक छोटा सा म्यूजिक मैंने प्ले किया था ना, एक चुटकी सॉन्ग जिसे कहते हैं, मैं हमेशा करता हूं आपके साथ यहां पर एक छोटा सा गेम प्ले करता हूं, उसी में मैंने गाना पूछा है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अब जल्दी से आप मुझे मैसेज करोगे 9837896896 पे। मुझे इंतजार है आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप का। आप में से ही किसी ने इस गाने की रिक्वेस्ट भेजिए, फटाफट से मैं प्ले करता हूं। ये मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहां पर, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज तुषारिका आनंद, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तुषारिका जी मैं बहुत ही बढ़िया हूं, आई एम एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड एंड आई एम वेरी वेल। एक मैसेज और आ गया, हाय आनंद कैसे हैं आप, आपकी वॉइस अच्छी है, आप मेरी वॉइस को रेंट पे ले जाओ और यूज करके वापस दे देना। सबको मेरी आवाज अच्छी लगती है यार, मेरे घर वालों को क्यों नहीं लगती। आने वाला गाना वेलकम फिल्म से, क्या मूवी थी यार ये, अरे जितनी बढ़िया मूवी थी ना उतना ही बेहतरीन गाना था इसका ये। मजे की बात, आनंद राज आनंद जी ने इस गाने को गाया है और रेडियो भी इसकी आवाज चल रही है आनंद की। क्या अमेजिंग कॉम्बो है यार। चलो आप मुझे मैसेज करेंगे 9837896896 पे। मुरादाबाद में एक बहुत ही अच्छे कैंपेन की शुरुआत हुई है, दिस इज वेरी वेरी फैबुलस इनिशिएटिव। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा ना, आपका दोस्त आपको बताएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। आप जो अपने किचन में प्याज आलू के छिलके, केले के छिलके, फ्रूट्स के छिलके इधर उधर फेंकते हो ना, इससे एक बहुत ही अच्छी चीज बन सकती है और बहुत ही अच्छा जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है मुरादाबाद में एंड इस इनिशिएटिव के बारे में आपको नहीं पता होगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगा ना अभी आपको। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक गाइस।

झाड़ू पोछा किया मैंने, सुबह सुबह बहुत काम था। क्या किया है, क्या किया है सनम, गाना प्ले किया, कुछ नहीं किया। क्या बात है यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसे अच्छे अच्छे गाने बजते रहते हैं जी, मगर आप मेरे शो पे हैं तो ऑफकोर्स ही गाना बजना तो बनता है आज की मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक है। हाय, कैसे हाल चाल, क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है ना? वेरी गुड। वेल, जोरदार तालियां आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सच में बहुत ही कमाल कर रहे हो यार, एंड आई एम सो ग्लैड इतने सारे मैसेज मेरे पास आ गए, आई कांट बिलीव दिस। गायत्री नगर से मेरे पास मैसेज पहुंचा है शुभा का। शुभा मुझे लिखती है, आनंद क्या खा के आता है भाई, तू कैसी कैसी अच्छी अच्छी बातें कहां से कर लेता है। मैं सच बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, मैंने अभी कुछ खाया ही नहीं है। बस मैंने क्या खाया था, सुबह सुबह बेसन का चीला मैंने बनाया था आज ब्रेकफास्ट में, संडे था तो मैंने। अब पता है मेरे साथ एक मजेदार चीज क्या हुई, एंड ऑफ कोर्स ये आप में से डेफिनेटली सबके साथ जरूर होती होगी, नहीं भी होती होगी तो किसी किसी के साथ तो होती होगी। एक्चुअली ना, मैं जब भी मैं ऑफिस आता हूँ, वर्किंग आर मेरा मंडे टू सैटरडे होता है, मतलब वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे, और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता है 5:30, मुझे स्टूडियो आना होता है एवरी मॉर्निंग, एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं मंडे टू सैटरडे वाले आर में होता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं उठ ही नहीं पाता हूँ 5:30। मेरे को लगता है नहीं भाई, मेरे को नहीं उठना है 5:30, नहीं पहले उठना होता है मेरे को, नहीं यार अभी थोड़ा और सो जाऊँ थोड़ा और। फिर जब संडे आते हैं तो मैं सैटरडे की ना लेट नाइट जागता हूँ कि नहीं कल तो संडे यार, आराम से उठेंगे। बट नेक्स्ट डे संडे के दिन ही ना भाई साहब, इतनी ज्यादा मतलब औकात से बाहर वाली बात हो जाती है, तुरंत आँख खुल जाती है 4 बजे, या तो कह सकते हैं कि वो आदत में है, रूटीन में है। मैं हर संडे सोचता हूँ कि यार आज मैं लेट उठूंगा, बट कभी हो ही नहीं पाता है, हमेशा और जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद नींद ही नहीं आती है भयंकर। बट जब मेरे वर्किंग डेज होते हैं ना, जैसे मंडे टू सैटरडे, तब मुझे ऐसा लगता है कि यार 5 मिनट और सो जाऊँ 5 मिनट, और तब नींद भी आ रही होती है। बट जब छुट्टी वाला दिन होता है तब नींद ही नहीं आती है, पता नहीं भाई साहब क्या दुश्मनी है मेरी संडे के साथ। खैर, आई डोंट नो ये आप में से किसी के साथ होता है नहीं, बट मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। मैं सोचता हूँ संडे को ढेर सारा सोऊंगा यार, ढेर सारा सोने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता यार। खैर, अपनी किस्मत में है ही नहीं संडे एंजॉय करना। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर मैसेज यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा। ये मैसेज आया है हमारे पास मेघा जी का, एंड बहुत ही अच्छे गाने की रिक्वेस्ट डाली है मेघा जी ने। मौसम का जादू है मिताओ, वाओ आई लव दिस ट्रैक यार, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये गाना सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुनते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। एक तो मौसम एब्सोल्युटली इतना ऑसम हो रहा है मुरादाबाद का, ऊपर से इतना बढ़िया गाना मेघा जी ने हमें पहुंचा दिया है। सो मेघा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने ब्यूटीफुल गाने की रिक्वेस्ट डाल दी आज की सुबह। जितनी कमाल की मूवी थी ना, उतनी कमाल के इस मूवी के गाने थे यार। SP बाला सुब्रमण्यम साथ में लता मंगेशकर जी की ब्यूटीफुल आवाजों में इस गाने को सुनेंगे हम। और मेघा जी, थैंक यू सो मच इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। आप सुन रही हैं FM मुरादाबाद 89.6। जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यूनिंग किया है, आपका भी वड्डा वाला दिल से वेलकम है यार। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मौसम जब दिल के तार छेड़ते हैं, हवाएं प्यार की खुशबू लेकर आए, और हर बूंद, ये जो बारिश की आजकल हो रही है ना, ये किसी न किसी की याद दिला देती है यार। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब ऐसे गाने हमें सुनने को मिलते हैं तो मजा आ जाता है। ये खूबसूरत गाना है जो आपको बनाएगा और भी दीवाना मेगा जी की रिक्वेस्ट पे। इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, LB राइट बैक, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। हाँ, कहीं जाइएगा मत, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा मत। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हाय हाय,

0: क्या बात है गाइस,
1: इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया।
0: बहुत ही बेहतरीन ट्रैक।

0: सच में यार गाना एब्सोल्युटली ऑसम था, और सच बताऊं ये वो गाने हैं ना जिनको सुन के यादें ताजा हो जाती हैं। सच्ची बोल रहा हूँ यार मैं आपको।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोन,
10: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
0: हाँ जी, जो यहाँ पर आते हैं वो दिल से बिंदास ही बोलते हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक यू वंस अगेन 11:50 स्टूडियो क्लॉक में। यार टाइम का पता नहीं चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता यार कितनी तेजी के साथ टाइम जो है निकलता जा रहा है। मतलब सोचो ना 11:50 हो गया, मतलब मेरा जाने का टाइम कितनी जल्दी हो गया यार। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई कोई घड़ी का टाइम पीछे कर दो, मेरे को अभी और बातें करनी है, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, ये
11: बड़ा
0: टाइम है यार। जो टाइम के साथ चलते हैं ना उनकी जिंदगी में जीत हमेशा होती है। गर्मा गर्म चाय इलाची वाली
11: पीछे आ गवा।
0: अच्छा जी, मैं इतना हैंडसम हूँ, सच्ची कह रही हो क्या? मुझे शर्म आ रही है, ऐसे मत बोलो।

0: भी आपको मुझे बताना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 9837 8 9 6 8 9 6। आप जहाँ भी सुन रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट, आप ऐसे ही सुनते रहिए। एक मैसेज मेरे पास आया है।
1: राधे राधे
0: राधे मैम, गुड मॉर्निंग।
1: आनंद जी, इंसान का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि मेरे पास अभी समय बहुत है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने सपने, काम और अपनों को समय देने के लिए कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि कल करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि न समय वापस आता है और न अपनी लाइफ सिक्योर है कि कल हम है कि नहीं है। इसीलिए अपने सपनों को और अपने काम को और अपने को अपनों परिवार के समय देने के लिए कल पिन में ना छोड़े। आज पर हम
0: जी
1: वर्तमान में हमको जीना चाहिए, ना कि भविष्य के लिए कि हम कल करेंगे। जो काम करना है आज कर डालो। तो ये वाला गाना सुनवा दीजिए, कल हो ना हो का, कि हर घड़ी बदल रही है जिंदगी।
0: क्या बात है। एक और वॉइस नोट भी जाएगा जी ने।
1: आनंद जी, आपका शो काफी अच्छा चल रहा है। हमारे प्रदेश में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे
0: जी जी।
1: और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है।
0: थैंक यू मैम।
1: और आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं और लंच बना रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: अगर खाना होगा तो आ जाइए आप भी।
0: बिल्कुल। अब देखिए आपने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ। जोरदार तालियां आपके लिए। क्या बात है यार, सुबह सुबह इतनी प्यारी बातें करती है, देख रहे हो। मतलब मैडम ऐसे दिन बना दिया मेरा तो। हो हो, अब देखिए किचन में आप मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट मौका है आपके पास गाइस, बजाओ कौन सा गाना है।

0: दो घंटे के लिए रेडियो पर आते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा काम करके जाएं कि पूरा दिन आपका दिन बन जाए। ये वाला गाना सुनना चाहते हैं रिजवान खान साहब, सुबह हो गई मामू, बहुत प्यारा गाना है। आई लव दिस ट्रैक, शान साहब की आवाज।
1: घड़ी के कांटे भागे,
0: बिल्कुल ये गाना डेफिनेटली थोड़ी देर में आप तक पहुंचेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, लेकिन उससे पहले हम ये वाला गाना प्ले करेंगे। हाँ जी, और बाकी व्हाट्सएप लगातार आपके मिल रहे हैं, जैसे हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शहीद शारिक अली अंसारी, बाबू अंसारी एंड मिराज अंसारी जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग मस्ती में आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एंड गाने भी अच्छे प्ले कर रहे हो, अपडेट अच्छी दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। ये लिखते हैं इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत वक्त है। यार बिल्कुल सेम, एंड मैं अभी बहुत लंबा जीऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो आज हालात हैं उसके साथ इंसान अपने आप को खुश रखे मेरा, और ये ना सोचे कि हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा, तभी हमारी ज़िंदगी में हम खुश रह पाएंगे। सबसे अच्छा ये कि अपने वक्त को आज में जियो, क्या बात है, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया इरशाद जी, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या लगता है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ, आपको क्या लगता है जो इंसान को लगता है कि ये है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9837896896। लेकिन समय गया, 11:55 हो गया, चलो ये गाना सुनते हैं, जितने भी मैसेज है मैं झट से फट से पढ़ के जाऊंगा यार, टेंशन ना लो, फिलहाल ये गाना सुनते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है मामूजी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब सुबह नहीं हो रही, अब दोपहर के 12 बज गए और अब हमें जाना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे? 12:01 हो रही है। देखिए, अब हमें जो है आपसे जाने की इजाजत लेनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से आपको टाटा गुड बाय बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया और भी बहुत सारे काम है। संडे छुट्टी का दिन नहीं, हमारे लिए बहुत सारे काम का दिन है।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: तो दोस्तों, अभी फिलहाल घड़ी की सुइयां मुझे और इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम आपके साथ और ढेर सारी बातचीत करें। अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना? तो अभी के लिए फिलहाल आप मुझे दीजिए यहाँ से जाने की इजाजत। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, खिसकता हूँ, आपको मिलूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे वेरी वेरी सून। आज का दिन आपके नाम डेफिनेटली होगा जी, बस आप कहीं मत जाइए। और ये रेडियो की सुई ऐसे ही जो है बिल्कुल नहीं गंवानी, ऐसे ही चलते जाना है। जिस स्टेशन पे आप हैं उसी स्टेशन को आप ट्यून इन रखिए। एंड फिलहाल मैं अब जाने की इजाजत लूंगा आपसे। एंड कब मिलूंगा मैं इसे स्टेशन पे? जल्दी मिलूंगा। मैं छोड़ के जाऊंगा एक अच्छा सा फैबुलियस गाना। बाकी जो मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछा था, जस्ट नॉर्मली मुझे लगा आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब वाला सेशन जब तक करता नहीं हूं ना तो कुछ अधूरा सा लगता है। मैंने कहा था कौन सा गाना है ये, यही आपने मेरे को बताना था। एंड गाइस कांग्रेचुलेशंस, सबने अच्छे जवाब दिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सब ने जो है एक से बढ़कर एक बढ़िया वाले जवाब दिए। मानना पड़ेगा यार, 90s लवर तो सभी हैं, सब एक से बढ़कर एक धाकड़ और धांसू वाले आंसर दे दो आप लोग। इतना बढ़िया जो है आप लोगों ने खेला मेरे साथ ये गेम, मजा आ गया और सबने मजेदार और करेक्ट आंसर दिए हैं। बस यही पूछा था मैंने। कौन सा गाना था और सबने अच्छे जवाब दिए हैं। गाइज थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप करते हो यार, आई एम सुपर एक्साइटेड। आप लोग से बात करने के बाद तो वाइब ही अलग हो जाती है मेरी, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल ये जो वॉइस नोट आए थे इसको फटाफट सुन लेते हैं, जरा क्या कह रही हैं।
5: अकॉर्डिंग टू मी, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं ठीक हूँ।
0: राइट, क्या बात है, बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब कम बोला लेकिन बहुत कमाल का बोला। ये बड़ा प्यारा गाना है, उदित साहब की आवाज है, साथ में अलका याग्निक जी साथ दे रही हैं। और मैंने जो गाना प्ले किया था वो कौन सा था ये बताएंगे?
6: आनंद जी, जो आपने म्यूजिक चलाया है, हाँ। उस गाने के बोल हैं, मारे हेवड़ा में नाचे मोर, हम साथ साथ मूवी से है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारा खिताब मुझे लग रहा है यही जीत के ले जाएंगे भाई साहब। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? मोहम्मद सलमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट की थी मुझे। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा यार, समय थोड़ा कम है। हाय नोनेश जी, कैसे हालचाल है? सही जवाब आपने पहुंचा दिया है, गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग जी, हम साथ साथ हैं, क्या ट्रैक था? हाय अलीशा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी माय डियर। अलीशा ने सही जवाब दिया था। इसके अलावा मेरे पास सही जवाब पहुंचा था यहाँ पर इरशाद हुसैन अंसारी जी का। एवरीबॉडी चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। डॉक्टर सुरेश जी मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े थे। ललिता कश्यप जी सही जवाब के साथ जुड़ी थी। लक्ष्मी देवी सूर्यनगर लाइन पार से सही जवाब पहुंचा रही थी, लिखती हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आज आपके साथ बहुत ही आनंद आ रहा है एंड मैं अपने फादर इन लॉ के साथ जो है आपका शो एंजॉय कर रही हूँ, वेरी नाइस। एंड साथ में ये गाना भी सुनना चाहती थी अपने फादर इन लॉ के साथ। ओह थोड़ा सा लेट हो गया मैम, बट सी आई विल ट्राई, मैं प्ले करने की पूरी कोशिश करूंगा। गुलाम चरणी पाशा जुड़ गए, रेखा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। सुप्रभात आनंद जी, आपको भी सुप्रभात हो रही है, लेकिन अब तो गुड आफ्टरनून हो गई। और हमारे साथ नैनीताल से बड़ी खूबसूरत वादियों से एक मैसेज पहुंचा था। हाय जय श्री राम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ये लिखती है, ना साथ बैठते हैं ना मिलते हैं, फिर भी सब सब कुछ अपना सा लगता है, बिना पूछे हाल बता देता है, यही तो आरजे और दोस्त में फर्क मिटा देता है, ना दवाई देता है ना इंजेक्शन देता है, फिर भी हर दर्द की दवा कर देता है। वाह वाह वाह वाह, सारे लोग बड़े शायराना हो रहे हैं आजकल है जी। अरुण सिंह सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं अमरोहा से मेरे साथ, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं मुझे। गाइस चलिए मैं फिलहाल अभी यहाँ से लूंगा जाने की इजाजत, जिन लोगों के गाने हैं मैं कोशिश करूंगा उसको प्ले करके ही जाऊं, और बाकी ढेर सारा और भी काम है जो मुझे करना है। फिर मिलते हैं अपन आपको 3 बजे से स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इंतजार रहेगा आप सभी का 3 PM सी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बिंदासपुर में मेरी आपकी होगी मुलाकात ढेर सारे गानों के साथ और बहुत सारी बातें भी होंगी। सो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, 3 बजे कॉल पे बात करने के लिए रेडी रहिएगा, एक अच्छे टॉपिक के साथ एंट्री करूंगा। बाकी ढेर सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए थे, उन सभी का दिल से थैंक यू सो मच। और बाकी गाइज जिन लोगों की रिक्वेस्ट अभी पूरी नहीं हुई ना, 3 बजे पक्का मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करके जाऊंगा, डोंट वरी, 3 से 5 होगी मेरी आपकी मुलाकात। बाय, अभी के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एंजॉय करती है संडे को, बाय बाय।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मेरा नाम है आरजे आनंद।
4: और मैं हूँ आपकी नई आरजे टीकन देवी।
3: जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ टीकन भाभी इस शो को आपके लिए प्रस्तुत करेंगी। इस सीरीज का नाम तो आप जानते ही हैं, सेहत सही लाभ कई। आप सोच रहे होंगे आज भाभी एक्सपर्ट के रूप में ना आकर आरजे के रूप में कैसे आ गई। असल में आरजे राज के घर में जश्न मनाया जा रहा है, उसकी भतीजी 6 महीने की हो गई है तो उसका अन्नप्रशन हो रहा है।
4: अरे भाई, इस बात को साफ साफ बोलिए ना। श्रोताओं, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था ना कि 6 महीने तक नवजात शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना गाय का दूध, ना भैंस का, ना फॉर्मूला, ना सेरेलेक या कोई भी ऊपरी भोजन। लेकिन 6 महीने के पूरे होने पर बच्चे को पूरा आहार देना चाहिए, माना कि बच्चों को नए नए खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए। कई समुदायों में इसे एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अन्न प्रशन यानी अन्न का पहला आहार, जैसे अन्न चटाना या जीवन का पहला भोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
3: शुक्रिया हमें यह समझाने के लिए भाभी। तो आज आरजे राज की भतीजी 6 महीने की हो गई और उसे कोई अन्न खिलाया जाएगा, इसीलिए वो आज छुट्टी पर है। भाभी को तो आना ही था इस कार्यक्रम के लिए। तो आज भाभी आपकी आरजे भी है और एक्सपर्ट भी है,
4: तो क्यों ना आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करें कि आखिर पूरक या संपूरक आहार होता क्या है। यह माँ के दूध के अलावा जो अतिरिक्त भोजन होता है और जो अपने ही घर में पकाते हैं, उसे अर्ध ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाया जाता है, उसे ही संपूरक आहार कहते हैं।
5: सभी दीदी को मेरा प्रणाम।
6: प्रणाम दीदी।
5: आप सब कैसी हैं?
6: हम सभी अच्छे हैं।
5: दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है?
7: हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था
5: और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था
8: और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था।
5: वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद हैं। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी, जो मीना की सास भी है, से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया।
9: हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया।
7: पूरक आहार? वो क्या होता है दीदी?
9: बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है।
7: लेकिन छोटे बच्चे को पूरक आहार क्यों? उनका पेट तो माँ के दूध से ही भर जाता है।
9: क्योंकि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है, परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसकी पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए।
5: वाह दीदी, तब तो मेरा मुन्ना भी 5 माह का होने जा रहा है, मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार।
9: बिल्कुल नहीं दीदी, पूरक आहार 6 माह पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार बार दस्त हो सकता है और बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही रहता है और आगे चलकर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है।
7: दीदी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए?
9: 6 माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अथवा नरम खाना खिलाना चाहिए, न कि बहुत पतला खाना। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में ठहर सके।
5: लेकिन दीदी, छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए ये भी बताएं।
9: जरूर, जब बच्चा 6 से 8 माह का हो तो उसे कम से कम दिन में 2 बार पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 माह का हो तो उसे दिन में कम से कम 3 बार आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 12 से 23 माह का हो तो दिन में कम से कम 3 बार पूरी कटोरी भरकर खाना खिलाना चाहिए। और हाँ दीदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। बच्चों के खाने में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दीदी? बच्चों के रोज के खाने में इन 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए। पहला समूह, अनाज एवं कंदमूल, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। दूसरा समूह, सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां, जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, बादाम। तीसरा समूह, मांस और मछली। चौथा, अंडा। पांचवा, दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे कि दही, पनीर, घी, खोआ। छठा, हरी पत्तेदार साग सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां, जैसे आम, पपीता, गाजर, तरबूज, कोहड़ा, टमाटर। और सातवां, अन्य सभी मौसमी फल एवं सब्जियां। इन सभी समूहों से कम 4 समूहों का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए।
10: पर दीदी, रोज कम से कम 4 समूह का खाना कैसे खिलाएंगे? क्या बच्चा उतना खा पाएगा?
9: बहुत आसान है दीदी, जैसे चावल, दाल, कोई मौसमी सब्जी जैसे बीन्स या गाजर या साग मिलाकर आप खिचड़ी बना सकती हैं।
0: और ऊपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए, हो गए ना 4 समूह। और आप दूध,
9: आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती हैं।
10: वाह दीदी, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसानी से बनाकर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा दीदी, बच्चों को पूरा आहार खिलाते समय और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले माँ को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। खाना खिलाने से पहले बच्चे का भी हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चे को धैर्य पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। ध्यान रहे दीदी, खाना खाने से इनकार करना कुपोषण की ओर पहला कदम है। अगर इस स्थिति में सुधार न हो तो तुरंत आशा, ANM या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दीदी, पूरक आहार के बारे में आज आपने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी?
8: 6 माह पूरा होते ही बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए
9: और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए।
8: बच्चों को दिन भर में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों से बना खाना खिलाना चाहिए।
9: बहुत अच्छा दीदी, आप लोगों ने सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों का पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी।
6: जरूर दीदी,
8: इन बातों को हम अपने आसपास की दीदियों को भी जरूर बताएंगे।
6: धन्यवाद दीदी।
9: सभी दीदियों को धन्यवाद।
3: पर भाभी, इसे 6 महीने पर ही क्यों शुरू करते हैं, पहले या बाद में क्यों नहीं?
4: क्योंकि 6 महीने की आयु के बाद केवल माँ का दूध शिशु के संबंधी विकास की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता। बच्चों को अन्य आहार ना मिलने तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी धीमा होने लगता है, इसीलिए उसे अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है।
11: अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया, याद है?
12: कितने महीने की हो गई है मुन्नी?
13: 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है, क्या खिलाती हो इसे?
12: दांत के बिना खाएगी कैसे?
14: अपना दूध ही पिलाती हूँ।
15: जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए।
16: 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे।
3: वाह, इससे तो सारी जानकारी मिल गई। तो क्या हम अपने श्रोताओं को ये भी बता सकते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे में किसी प्रकार का विकास होता है?
4: बिल्कुल, करवट लेना तो बच्चा 3 महीने की आयु में ही शुरू कर देता है, लेकिन 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। बैठना ही नहीं, खिसकना, चीजों को पहचानना और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, दूसरे व्यक्तियों की भोजन में रुचि लेना, चीजों को मुँह में लेना और उन्हें चबाना शुरू कर देता है। साथ ही दाँत निकलने की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है। अगर बच्चे को 6 महीने से पहले अन्य भोजन देना शुरू कर देंगे तो माँ का दूध और उससे मिलने वाले फायदे दोनों छूट जाएंगे और माँ के दूध में पाए जाने वाले सुरक्षा तत्व उसे नहीं मिल पाएंगे, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों का डर भी हो सकता है। और अगर 6 महीने के बाद संपूरक आहार की शुरुआत की जाए तो बच्चों में कुपोषण और अनीमिया का खतरा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर शारीरिक और मानसिक विकास पर होगा। मेरे पास इसके लिए भी और जानकारी है।
17: देखिए क्या लिखा है इधर।
11: अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है
12: कितने महीने की हो गई है मुन्नी?
13: 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है, क्या खिलाती हो इसे?
14: दांत के बिना खाएगी कैसे?
15: अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए।
16: 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे।
3: ये लो, आरजे राज का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ प्रोग्राम चल रहा है। अरे हाँ हाँ, भाभी भी स्टूडियो में है। ये लो, स्पीकर पर फोन कर रहा हूँ।
18: नमस्कार टीकन भाभी।
4: नमस्ते भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बिटिया के 6 महीने पूरे होने पर।
18: मेरे साथ मेरी बहन भी है जिसकी बेटी की आयु 6 महीने है, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आपके सवालों के जवाब हमारे सभी श्रोता भी सुन लेंगे।
19: नमस्ते भाभी, मैंने आपकी तारीफ आरजे राज से बहुत सुनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि मैं अब अपनी बेटी को क्या क्या खिला सकती हूँ।
4: आज तो सूजी की खीर या हलवा चटाया होगा।
19: हाँ, दादी ने खीर और नानी ने हलवा चटाया था, पर उसे दोनों ही पसंद नहीं आए।
4: वो तो स्वाभाविक है, स्वाद तो धीरे धीरे बनता है, लेकिन कोशिश पूरी करते रहना पड़ेगा कि बच्ची को एक संतुलित आहार मिले।
19: वही तो जानना चाहती हूँ, संतुलित आहार क्या होता है? ये तो सभी कहते हैं कि संतुलित आहार देना, पर ये नहीं कोई बताता कि कितना देना है, कब देना है।
4: मैं बताती हूँ, सभी चीजों का मिश्रण, गेहूँ, दाल, सब्जी या दाल, चावल, सब्जी को घी या तेल में पकाकर उसको मसल कर अर्थ ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाना ही संतुलित आहार कहलाता है। साथ में अन्य फल को मसल कर या फिर अंडा, मछली, मीट को भी अच्छे से पकाकर और मसल कर बच्चों को दिया जा सकता है।
19: क्या आप थोड़ा पकाने की विधि भी बताएंगी?
4: हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं साफ सफाई की बातें बताना चाहूंगी। भोजन को पकाने के पहले और बच्चों को खिलाने के पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें। साथ ही जो भी आप पकाने जा रही हैं, सब्जियां या दाल, चावल, सभी को धो लें। भोजन को साफ बर्तन में परोसें और मक्खी चूहे से दूर रखें। बासी खाना ना दें क्योंकि अभी बच्चे की पाचन शक्ति विकसित नहीं हुई होती है।
3: अब अंजलि दीदी, आप ही सारे सवाल पूछ लेंगी तो हमारे बाकी श्रोता क्या करेंगे?
19: सॉरी सॉरी, मेरे पास अभी बहुत से सवाल है।
3: तो चलिए पूछिए, साथ ही मैं भी श्रोताओं के सवाल ले लेता हूँ, सभी को जवाब मिल जाएंगे।
19: शुक्रिया टीकन भाभी। अच्छा, अब ये बताइए, बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए? खाने की चीजों से ज्यादा पोषण कैसे मिल सकता है?
4: बढ़ते बच्चों को ऐसा भोजन चाहिए जो ऊर्जा से भरपूर हो, जिसमें विटामिन, प्रोटीन और खनिज पदार्थ सही मात्रा में हो। बच्चे की और आवश्यकताओं के अनुसार भोजन में विविधता भी होनी चाहिए। खाना आसानी से पच सके इसके लिए उसमें फाइबर भी होना चाहिए और बच्चों को पाचन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा और माता पिता दोनों परेशान हो जाएंगे। शुरू में जो भी खिलाएंगे वो नरम और सही गाढ़ा हो तो बच्चे को निगलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका भोजन और भी गाढ़ा और ठोस हो सकता है और इसमें अन्य पदार्थ भी जोड़े जा सकते हैं। नियमित और प्राकृतिक भोजन ही बनाएं और खिलाएं। नमक और चीनी की मात्रा ना के बराबर ही रखें क्योंकि ज्यादा नमक किडनी के लिए अच्छा नहीं होता और अधिक मीठा भी हानिकारक हो सकता है।
3: तो क्या यह कहना उचित होगा कि बच्चों को खिचड़ी, गाढ़ी दाल, मसले हुए चावल, अच्छे से गीला हुआ दलिया, इडली, डोसा या मसला हुआ पराठा, पोहा, ढोकला, मसले हुए आलू या कोई और सब्जी, बीट रूट, पिसा हुआ पालक, मसला हुआ केला, उबला हुआ अंडा या गूदे वाले फल जैसे आम, पपीता, शकरकंदी या फिर सूजी या आटे का हलवा और अच्छे से पिसे हुए मेवे खिला सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना या बिस्कुट, डब्बे वाले पैकेट फूड, मैगी वगैरह ना दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि बीमारियां जरूर हो सकती हैं।
4: बहुत बढ़िया, आप तो बहुत समझदार होते जा रहे हैं। सुना आपने, बच्चों को धीरे धीरे और सही मात्रा में खाना खिलाएं, साथ ही में माँ का दूध भी पिलाएं। शुरू में 2 चम्मच अतिरिक्त खाद्य पदार्थ काफी है, 1 सप्ताह के बाद 4 चम्मच खिलाएं और फिर जब बच्चों को स्वाद आने लगे तो आधी कटोरी खाना 3-4 बार खिलाएं। खाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं।
3: 6 महीने की आयु की बच्ची की माँ पूछ रही है कि मेरी बच्ची अब 6 महीने से अधिक आयु की है, अब उसे पानी कब और कितना पिलाना चाहिए?
4: देखिए, 6 महीने तक तो बच्चों को पानी नहीं देना है, लेकिन जब बच्चा अतिरिक्त भोजन खाने लगता है तो उसे पानी देना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में चम्मच से पिलाएं, जितनी प्यास होगी उतना ही पी लेगा बच्चा। पानी की मात्रा सही है या नहीं इसकी पहचान बच्चे के मूत्र से होती है। अगर हल्के रंग का मूत्र है तो पानी की मात्रा सही है, लेकिन अगर गाढ़े रंग का है तो पानी और पिलाने की कोशिश करें।
3: 6 महीने की आयु की बच्ची के पिता पूछ रहे हैं कि उनकी बच्ची अभी भी माँ के दूध के सिवा कुछ नहीं खाना चाहती है, जो भी खिलाओ उसे थूक देती है।
4: ये समस्या तो आम समस्या है। पहली बात तो यह है कि कोई नए खाद्य पदार्थ को खिलाना आसान नहीं है, यह बहुत पेशेंस या सब्र का काम है। बच्चे को पहले ठीक से गोद, कुर्सी या फर्श पर बिठाएं, फिर चम्मच उसके मुंह पर लगाएं, उसे स्वाद आने दें, फिर कम कम मात्रा में खाना उसके मुंह में डालें। शुरू में बच्चा अपने मुंह से खाना ढकेल देता है क्योंकि उसके पास खाने को निगलने का कौशल नहीं होता। ऐसे में खाने खिलाने वाले समझते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाना चाहता। बच्चे को ये कला धीरे धीरे आती है, अभी तो दांत भी नहीं होते तो बच्चा खाना चबा भी नहीं पाता, इसीलिए धैर्य की बहुत जरूरत है।
3: एक श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या कुछ खाद्य पदार्थ गर्म या ठंडे होते हैं?
4: आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत ऐसी सभी धारणाएं गलत मानी जाती हैं। जरूरी है कि आप मौसमी फल, सब्जियां और संतुलित आहार बच्चों को दें और ठंडे गर्म के चक्कर में ना पड़े। लेकिन याद रहे, बाजार के पैकेट फूड या रेडीमेड खाद्य पदार्थ बच्चों को ना दें।
3: अंजलि दीदी पूछ रही है कि यदि माँ का दूध और अतिरिक्त आहार दिया जा रहा है तो क्या उसे ऊपरी दूध देने की आवश्यकता होगी?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा है और 4-5 बार माँ का दूध भी पी रहा है तो ऊपरी दूध की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा है तो 1-2 कप ऊपरी दूध दे सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को चम्मच और कप से ही पिलाएं। बोतल से पिलाने में बोतल छूटना मुश्किल हो सकता है और बोतल को साफ रखना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर बोतल को सही से गर्म पानी से नहीं साफ करेंगे तो ये बीमारी का कारण भी बन सकता है और कुपोषण भी हो सकता है। अब भैया मुझे देर हो रही है, बस एक सवाल का और टाइम है।
3: आखिरी सवाल है कि बच्चा अपने आप खाना कब शुरू करता है?
4: यह सवाल तो अच्छा है। 9-10 महीने से बच्चा खुद चम्मच पकड़ना चाहता है, रोटी या चावल खुद खाना चाहता है। इसके लिए उसे प्रोत्साहित करें, कुछ खाद्य पदार्थ बच्चे के हाथ में दें, उसे बहला फुसला कर खाना पूरा खिलाएं। खाते टाइम जो बच्चा खाना गिराए या गंदा करे उसे परेशान ना होए। जितना बच्चा अपने आप कोशिश करेगा उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा।
3: आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा, मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा।
19: मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने पूरा कार्यक्रम सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: अरे ठहरो, अभी मैं जाते जाते आपको एक बहुत ही प्यारा प्रोमो सुनाना चाहती हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप अपने बच्चों को सही और संतुलित आहार देंगे तो पूरा कुटुंब, क्या पूरा गांव आपके बच्चे की सेहत जानने के लिए उत्सुक होगा। तो मुझे दीजिए आज्ञा और सुनिए ये प्रोमो।
20: है अकेली, चल सहेली, जान के रहना है।
21: देखो
20: कितनी प्यारी, आए हाय,
21: जाने क्या खाए,
20: यूं बढ़ती जाए।
21: देखो
20: 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी।
21: कुछ और,
20: वो भी 3-3 बार।
21: जान के ही जाएंगे इस बार।
20: दीदी, चावल का माड़
21: या फिर
20: दाल का पानी,
21: ध्यान से देख,
20: है कुछ और कहानी।
21: आलू,
20: कद्दू,
21: हट बुद्धू,
20: भिंडी,
21: टिंडा,
20: तो 6 महीने में खिलाए क्या। अंडा,
1: देखो
2: मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए।
22: बताओ ना क्या क्या खाए।
23: यही सब
24: बस 6 महीने की हुई अभी तो।
23: अरे तभी तो
25: घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए।
3: तो दोस्तों आज हमने जाना कि 6 महीने पूरे होने पर आपको अपने बच्चों को देना है संपूरक आहार और हम पर बनाए रखिए एतबार, क्योंकि हम आपके लिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर लेकर आते हैं ना सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम। तो अब बारी है शपथ की।
26: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
27: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
28: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
26: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
27: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
28: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
26: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भावी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
1: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
0: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
0: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
1: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
1: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
0: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
1: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
1: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
0: और डिजिटलकरण क्या होता है?
1: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
0: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
0: दोस्तों, आज के सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची कैसे हो आप?
6: मैं तो एकदम बढ़िया हूं, और उम्मीद करती हूं कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
5: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
6: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
5: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
6: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
5: मुरादाबाद के दोस्तों याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
6: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
5: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
6: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों, बच्चों में कंपैरिजन, और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
5: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
6: अच्छा।
5: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और कई चीजों पे जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है, सुबह सुबह यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
6: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
5: बिल्कुल सही कह रही हैं प्राची जी। चलिए हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: चकला क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
1: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
0: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
1: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
0: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
1: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार, जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी, वहाँ पे भी मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
0: बस प्लीज़ आप ज़्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
1: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
0: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ, बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।
2: कैसा लगा मामा?
3: क्या
2: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
3: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
2: क्या यार विवेक? अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी। कोई काम सब तो मैं ही करूँगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

0: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
0: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
1: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
0: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए
1: जिद करो।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी पर बात करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे वो फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज कर किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है

0: निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
1: हाँ जी।
0: कोई भी फसल हो।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सके, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
1: ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए, अर्थिंग अप, जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
1: हाँ जी, हाँ।
0: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए, संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए, गर्मी चल रही है, इसमें टॉप बोरर, पायरिल्ला, दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए, ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है, गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूमता लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है। हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है, अगर संभवता जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में, उसको करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा यहीं, अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
0: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं, प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं, उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारी जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा, और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें, और व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश न करें। जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है, समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है, कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं, जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए, उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें, जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आपके यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं, मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी हैं हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है किसान भाई ने कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए।
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमुनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है। जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए।
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसको जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके इनको हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें।
0: देखिए अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने के सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें, स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी। तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई ये क्या था सर, उर्वरक ओके हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते।
0: देखिए ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: Correct.
0: तो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा, तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए, कोई कीट कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, और श्रोताओं हमें आशा है कि आपको ये जानकारियां बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा, अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, बाय बाय, टेक केयर,
0: बहुत बढ़िया।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी,
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी, जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा, और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की की विकास परक सोच की खासियत है, विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क, हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फु क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
3: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
2: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
3: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है, इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: इसीलिए
1: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह, खीर
0: बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच। तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं। और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
6: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
6: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
7: मुरादाबाद से
5: संपर्क कीजिए।
6: नियम और शर्तें लागू।

0: इसलिए तो स्टूडियो चले आए हैं, आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो हमने सोचा चलिए बिना किसी देरी के स्टूडियो पहुंच जाते हैं आपसे मुखातिब होने। एब्सोल्युटली यार,
1: कि तुमसे मिलने को दिल करता है।
0: आहा
1: बाबा, तुमसे मिलने को दिल।
0: 3:11 हो रहे हैं, आप आनंद को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, कैसे हाल चाल है आप सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम फैंटास्टिक होंगे। बहुत खूबसूरत मौसम है, गर्मी बहुत है बाहर, ऐसे में अपना ध्यान जरा आप ज़्यादातर पानी पीकर ही रखिए, क्योंकि जितना पानी आप पियेंगे उतना बढ़िया रहेगा। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बहुत प्यारी सी दोपहर है, संडे का दिन है, प्रोग्राम है बिंदास बोल, यहाँ पर बातें होती हैं मेरी और आपकी एक्सक्लूसिवली लाइव। ये एक फ़ोन कॉल सेशन है, तो इसमें आप हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉल के माध्यम से जो है अपने दिल की बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। 9837896896। चलिए लौट कर आते हैं अभी, फिर आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारा सा ट्रैक।

0: देखो गाना बहुत प्यारा है और ढेर सारे कॉल मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। 3:26 हो रहे हैं, आप आनंद को सुन रहे हैं। और हमारे पास अभी फोन आया था यहाँ पर नमन जी का। नमन ने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली कि यार आनंद दोपहर इतनी अच्छी हो रही है यार, ये गाना तो डेफिनेटली बजना चाहिए। तो पाकिजा फिल्म का मौसम है आशिकाना, आशिकाना मौसम होना हो, लेकिन गर्मी बहुत अच्छी खासी हो रही है अभी। एंड बीते 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है उसने तो भाई कमाल कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इस बिंदास पूल शो में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कॉल करिए 9837-896-896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पर मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। फटाफट कॉल या मैसेज दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अभी मिलते हैं आपको।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। मेरा नाम आरजे है, ओनली ऑन आपके शहर का अपना देसी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं, आपका फेवरेट प्रोग्राम हर संडे प्रसारित होता है 3 से 5, जिसका नाम है बिंदास बोल। और इस वक्त इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहा हूं मैं, आपका दोस्त आनंद। ढेर सारी कॉल्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मुझे अभी पंजाब से कॉल आया हमारे पास, एक बहुत ही प्यारे गुरविंदर जी का। उसके बाद मुझे भटिंडा से भी कॉल आया, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है, जिसकी वजह से कॉल जो है बीच में ही डिस्कनेक्ट जा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें फोन कर रहे हैं तो प्लीज नेटवर्क एरिया में आके ही फोन कीजिएगा। और बाकी अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आज की इस खूबसूरत सी वाइब को फील करना चाहते हैं, इस मौसम में जो है कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप जुड़िए मेरे साथ आज की दोपहर, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। और इसी बात पर कॉलर भी मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। मुखातिब होते हैं सीधा एक्सक्लूसिवली लाइव। हेलो,
1: सावन के महीने में एक शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। क्या रूठ गई है किस्मत मुझसे किसी बात पर? मैं माफी चाहता हूँ अगर मुझसे खता कोई खास हुई।
0: क्या बात है, आपने तो आते ही जो है खूबसूरत सी बात कर दी है। और इतनी खूबसूरत जो आपने अपने शब्दों में परोही बात हमारे लिसनर तक पहुंचाई है, उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका नाम भी जानना चाहेंगे। हुजूर, कौन साहब बात कर रहे
1: हैं? मुरादाबाद ग्राम से बात कर रहा हूं।
0: अच्छा, मकसूद हुसैन जी, क्या बात है, बड़े मजहबे रेडियो लिसनर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज से तो मुझे लग रहा था,
1: मैं तो आपकी आवाज को सच में मतलब यह है रेडियो पर तो सुन रहा हूँ, लेकिन फोन के जरिए बात मतलब यह है करने के लिए मैं फरस गया हूँ।
0: अरे मकसूद जी, ऐसी बात मत करिए, हम तो आपके दिलों में ही रहते हैं। ऐसा क्यों जनाब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
1: नहीं, दिलों में रहते, रेडियो पर आते सुनते रहते, आपके एड में सुनते रहते, आपके प्रोग्राम में सुनते रहते, लेकिन बात करने के लिए जो है काफी समय हो गया मुझे।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी एक लंबे अंतराल के बाद मेरी आपकी मुलाकात हो रही है ना।
1: हाँ जी, बताओ ना, हनुमान फरमाई साहब लेकर आए थे तो उसका 23 जून को दिन का प्रोग्राम, तो उसमें मेरा रिसार्ज खत्म हुआ था। रिसार्ज क्या, रिसार्ज बिना तो मेरी 1 घंटा नहीं की थी, लेकिन मैंने ये आइडिया से ना पोस्ट कराए थे अटैक मशीन।
0: ओके ओके।
1: हाँ, अगले दिन बुधवार में ज्योति सिंह मत मेरी अटैक में हो गई थी, तो इसलिए मैंने रिसार्ज नहीं कराया था।
0: चलिए, लेकिन
1: मैं बहुत तड़पा था आपसे बात करने के लिए, मन किया भाई साहब से बात करूँ और अपनी पसंद का गीत सुनूँ।
0: अरे क्या बात है मकसूद जी, बिल्कुल, आप वैसे अंदाज में बात करते हैं, इतने अच्छे तरीके से जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मजा आ जाता है। और एक लिसनर की खूबसूरती यही होती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती ही है। और बताइएगा, सब बढ़िया है आपके घर परिवार में, सब खैरियत?
1: हाँ, सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं।
0: चलिए,
1: यहाँ पर सभी ठीक है।
0: और बताइए। हाँ जी हाँ जी, हम तो मौसम की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी बारिश का जो है सिलसिला लगातार शुरू हो गया है कुछ दिन से, तो अब जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं अब जो है मॉनसून आ गया, मतलब बरसात का महीना शुरू हो गया है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी मौसम में बरसात आने में समय है, लेकिन बरसात आना है वो बात की बात है, लेकिन जब ये बारिश आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी लेकर आती है ना। कोई भी मौसम जब आता है अच्छा तो होता ही, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें ज़रूरत होती है छोटी छोटी सावधानियों की, वही आज हम बात करें।
1: सावधानियों की सावधानी जरूरत होती है, देखो इसमें जो है इसमें साफ सफाई का भी लेकर ध्यान रखे, कल भराम न होने दे, जो पानी भर जाता है अपने जो टायर होते हैं घर में पड़े, या कोई बर्तन टूटे फूटे होते हैं या नालियां वगैरह आगे होती हैं, तो उनमें पानी न जमा होने दे, उससे जो है मच्छर भी पैदा होता है, बीमारी दौड़ती है। साफ सफाई रखे, पानी का निकास रखे, तो कई बरसात का मौसम है और मानसून भी है, मानसून भी नहीं होता। लेकिन सर अब की बार मैंने बारिश में देखा सर के पिछले साल तो बारिश हुई थी तो वो धड़ाधड़ होती थी, पानी जमा नहीं होता था। आज की जो बारिश हो रही है, इस पट्टी की जो बारिश चल रही है, तो ये बूंदाबांदी की है, ये जमीन में जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा बड़ा फायदा है हम लोगों के।
0: अच्छा,
1: मतलब हाँ हाँ, थोड़ी नन्ही बूंद की बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो ये जो है जमीन के अंदर मिक्स होती जा रही है सर, बह गई रही है, मतलब जमीन जो है फूल गई है, मतलब आप समझ रहे हो।
0: हाँ, मैं समझ गया, मतलब जमीन को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, और जो फसल आप लगा रहे हो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, ऐसा
1: फायदा हो रहा है। धान की फसल इस टाइम जो है लग रही है, तो
0: हाँ, धान की रोपाई तो ऑलमोस्ट शुरू हो ही गई होगी, और शायद कुछ लोगों ने लगा भी दिए होंगे।
1: कुछ उसने लगाई भी थी, चल रही है और अभी चलेगी, जुलाई जुलाई से चलेगी अभी अगाई।
0: हाँ, जुलाई में ही अक्सर जो है धान रुपाई शुरू हो जाती है और ऑलमोस्ट यही समय होता है जब धान की रुपाई रहती है चालू।
1: सर ये जो फसल है ये तो गारे की होती है, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल भरकर ही ये फसल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है ना, हर मौसम में एक खूबसूरत फसल। जैसे हम सर्दियों की तरफ जाते हैं फिर वो गेहूं की होती है, अब जब जैसे सर्दियां एंटर होती हैं ये धान की कटाई रुपाई अभी शुरू हो गई है, अब इसकी कटाई होगी तब दशहरा और ये सब आ जाता है दिवाली।
1: लेकिन सर इसमें मैंने एक चीज देखी और आप भी अनुभव कर रहे होंगे, सभी लोग कर रहे होंगे,
0: बिल्कुल जी बताइएगा जी जी।
1: इसमें बरसात तो हुई लेकिन इस बरसात में पंखे घरों के नहीं रुके, सर्दी गर्मी बराबर है,
0: गर्मी बराबर है, ये बात तो मानने वाली है। खैर लेकिन बिल्कुल बिल्कुल
1: देखो और दिनों में देखो पीछे भी मतलब मई में आंधी आई, बारिश हुई, देखो कितनी ठंड हो गई थी। अच्छा पिछले साल भी है जो बारिश होती थी ठंड हो जाती थी, रात को चादर ओल्टी पड़ जाती थी सड़के में, और अब तो ऐसा मान लो 24 घंटे ताजा हो या दोपहर हो 24 घंटे बारिश भी हो रही है और पंखे।
0: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल मकसूद जी से सही कह रहे हैं आप। सही, चलिए इस गर्मी से थोड़ी राहत देते हैं आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी। कोई अच्छा सा गीत बताइए जिसे सुनकर सबको थोड़ा सा सुकून मिले और मूड भी फ्रेश हो जाए।
1: सर जी एक गीत है दरिया तीन फिल्म में है, रिमझिम बरसता बाहर ये पानी अंदर आग लगी है।
0: अच्छा कौन सी फिल्म का गीत आप बता रहे हैं?
1: दरिया दिल। हाँ रिमझिम बरसता बाहर ये पानी अंदर आग लगी है, या कोई दूसरा गाना होगा?
0: चलिए
1: सामन कापे मेरा मन,
0: चलिए चलिए चलिए मैं जरूर निकालूंगा ये गीत अगर मुझे मिला तो मकसूद जी। बाकी आपने फोन किया बहुत बढ़िया लगा मुझे और पहली कॉल जो है आपकी शामिल हुई। आपसे पहले 2-3 कॉल और भी आए लेकिन वो लाइव हो नहीं पाए, शायद आपका और हमारा कनेक्शन लिखा था आज बात करने वाला।
1: बस प्यार की बात होगी या किस्मत की बात होगी सर,
0: कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं सर है ना। बाकी बहुत अच्छा लगा, फिर कभी जरूर आपसे बातचीत करेंगे इसी स्टेशन पे, आप ऐसे ही सुनते रहिए। नमस्कार आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुड़े थे मकसूद हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। श्रोताओं आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837 896 896 पर, ये नंबर है हमारे स्टूडियो का। श्रोताओं अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बिल्कुल आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिर से मैं आपको नंबर दोहरा देता हूं 9837896896, ये वो नंबर है जिसके ज़रिए आप मेरे साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो सकते हैं हमारे स्टूडियो के माध्यम से, हमारे फ़ोन कॉल के माध्यम से। एक छोटी सी दिल की थॉट आपके साथ शेयर करता हूं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, हर छोटी बात को दिल से ना लगाना सीखिए। गमों के बादल तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, गमों के बादल तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बस आप हर हाल में मुस्कुराना सीखिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम बिंदास बोल, जहाँ पर आज आपका दोस्त आनंद आपके साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप भी हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोई बात है जो हम तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ बात है जो हम तक साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं 9837896896 पर। चलिए इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और इस गाने के बाद हम लौट कर आते हैं किसी और लकी कॉलर के साथ।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप आनंद के साथ हैं, बने हुए हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है बिंदास बोल, जहां बातें होती हैं ढेर सारी आपके साथ कॉल पर। और अभी हमारे साथ एक और हमारे प्यारे श्रोता जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो कहां से जुड़े हैं और आज वो हमारे साथ बात करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: आपको भी नमस्कार भैया, नमस्कार जी। अपना नाम बताएं, अपने आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर। मेरा नाम अजय कुमार चौहान, खत्तरी जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जी अजय जी, आपके पीछे अगर रेडियो चल रहा है तो उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए,
1: काफी दूर रेडियो है पर
0: रिपीट हो रही है आपकी आवाज।
1: जी बताइए,
0: बहुत बढ़िया है अजय जी, हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए। काफी लंबे समय के बाद मेरी भी आपसे बात हो रही है।
1: हाँ सर, हमने भी यही याद किया था सर को, आज देखते हैं कॉल करके लगता है तो
0: चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका फोन कॉल शामिल हो जाता है प्रोग्राम में।
1: जी
0: जी, और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: सर पढ़ाई सही चल रही है
0: जी।
1: सर मैं जब भी कॉल लगा दूं सर मुझे हिम्मत नहीं हारता, अब मेरी कॉल सफल हो जाती है।
0: अच्छा, मतलब आप लगा कर ही मानते हो तो आपका कॉल फिर वो लग भी जाता है, कनेक्ट हो भी जाता है। ये तो एक मोटिवेशन भी हो गया ना कि अगर आप किसी काम को चाह रहे हो और जब तक वो नहीं हो खत्म तब तक आप उसे ट्राई करते रहेंगे ताकि सफलता आपको, क्योंकि बीच में कभी भी मिल सकती है ना, आपको नहीं पता ना।
1: वही
0: और लोगों को भी वैसे ये मैसेज देना चाहिए अजय जी कि अगर वो लोग जैसे एक दो बार ट्राई करते हैं फोन नहीं लगता है तो फिर वो कॉल नहीं करते हैं ना प्रोग्राम में, क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं और इस चक्कर में फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर वो फोन कॉल की बात हो, है ना। और बताइएगा आपको बारिश के मौसम में क्या अच्छा लगता है? यार बारिश के मौसम में मुझे घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि चारों तरफ गीला गीला और थोड़ी कहीं कहीं पे वो जम जाती है कीचड़, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है।
1: घूम फिर के नहाने का आनंद ही अलग है सर।
0: हाँ ये भी आप सही कह रहे हो, अभी दो दिन की बात ही है, मैं कहीं निकल रहा था तो अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग थी, वहाँ से गाड़ी इतनी तेज निकली कि सारे उसने मेरे कपड़ों पे पानी कर दिया। भाई अब क्या ही मैं उसको बोल सकता हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं तमाम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग गाड़ी भी इतना स्टंट करते हैं भाई उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने भी लोग चल रहे हैं।
1: हाँ सर ये बात है सर, जब मतलब गाड़ी के चीट आती है तो सर आदमी उस समय गुस्सा नहीं होता है पर और खुशी हो जाता है, हंस के चला जाता है उसको।
0: लेकिन
1: मतलब अलग ही फील होता
0: है। लेकिन अगर कोई किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है और उसके कपड़े आप गीले कर दो तो वो तो अच्छी चीज नहीं है ना यार। वही और जब आपको पता है कि सामने पानी भरा हुआ है, लोग आसपास चल रहे हैं तो इतनी तेज से निकालना ही क्यों है भाई। नहीं यार, हम अपनी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे का एंजॉयमेंट खराब नहीं कर सकते हैं ना अजय, है ना। बस वही चीज है, बाकी बारिश के मौसम में जैसे हमारे पहले श्रोता ने कहा मकसूद जी ने कि पानी ना जमा होने दें, आसपास में जो है साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, मानसून में इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है, बाकी खाने पीने का ध्यान कोई नहीं रखता है मानसून में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अजय बताओ सब बढ़िया चल रहा है घर परिवार में, सब बढ़िया है?
1: सर आप लोग सब बढ़िया
0: है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो प्रोग्राम सुनते रहते हैं लगातार, बने रहते हैं ना स्टेशन पे हमारे?
1: हाँ सर प्रोग्राम सुनते रहते हैं, पर यह है कि थोड़े काम में मतलब कॉल करने का थोड़ा मूड नहीं होता सर।
0: ओके, जब काम में होते हैं तो फिर उस टाइम पे फोकस नहीं कर पाते ना, कॉल लगाने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है बेसिकली।
1: वो प्रोग्राम सुनते हैं फोन पे ही, मैंने मतलब ऐप डाउनलोड कर रखा है और घर पे रेडियो भी 24 घंटे चलता है।
0: बहुत बढ़िया, चलिए आपकी फैमिली को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद अजय। आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहेंगे जो आप हमारे तमाम सुनने वालों को आज डेडिकेट करेंगे?
1: सर ये वाला गाना सुना दीजिए, वो किसी और से मिल के आ रहे हैं फिर अच्छा। भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं।
0: चलिए चलिए गीत डेफिनेटली सुनवाते हैं, आप जुड़े बहुत बहुत थैंक यू अजय, अपना ध्यान रखो कि
1: थैंक यू
0: फॉर कॉलिंग अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अजय जी, फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी 9837896896 पर। ये स्टूडियो का नंबर है श्रोताओं, इस वक्त स्टेशन की घड़ी में वक्त हो रहा है 3:51, आप आनंद को सुन रहे हैं। ज़्यादा लंबे समय तक तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज आपको भी पता है बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से प्लस जो है वो पौधारोपण किए जा रहे हैं, सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। मुरादाबाद में भी ढेर सारे रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं और आज मुरादाबाद में भी तमाम पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे भी एक प्रोग्राम में पहुँचना है अभी थोड़ी देर में, 4:30 जो है मुझे पहुँचना है एक प्रोग्राम में पेड़ पौधारोपण के लिए, पेड़ लगाने के लिए। तो मुझे आपसे इजाजत जल्दी ही लेनी होगी क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बाहर की एक्टिविटीज होती हैं, बाहर ढेर सारे काम होते हैं जिनमें हमें जो है पार्टिसिपेट करना होता है। तो फिलहाल आप अभी तो मैं स्टूडियो में हूं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं आप 9837896896 पे। आनंद के साथ बने हुए हैं आप, प्रोग्राम है बिंदास बोल, स्टेशन की घड़ी में वक्त हो रहा है इस वक्त 3:51। चलिए इनका ट्रैक सुनते हैं, फिर मिलते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने के बाद आप सभी का स्वागत है, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम बिंदास बोल। ढेर सारे कॉल्स लगातार मुझे मिल रहे हैं। श्रोताओं आपका स्वागत है, 3:56 का समय हो रहा है स्टेशन की घड़ी में। और कुछ व्हाट्सएप भी मेरे पास पहुंचे हैं, जैसे कि हमारे पास ये पिंकू यादव जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह। इन्होंने लिखा है, जी नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? ये जयंतीपुर कॉलोनी से मैसेज करते हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बेहद ही पसंद आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ ये पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं रामलीला ग्राउंड से, ये भी लिखती हैं, आनंद जी बहुत ही अच्छी बातचीत और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति लग रही है आपकी, आपके रेडियो पे जो आप होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक और संदेश हमारे पास पहुँचा है, इनका नाम है माही लाल यादव, ये जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ रामपुर रोड से। गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, जी आपको भी गुड आफ्टरनून। और इसी बीच एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है मंसूरी कॉलोनी से, ये इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, आनंद जी आदाब, आप कैसे हैं? संडे में बिंदास बोल आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके लिसनर की बातचीत सुनकर अच्छा लग रहा है। उसके साथ ही साथ आप जो ट्रैक, जो सॉन्ग्स आप बजा रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा उमदा लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। और साथ ही साथ लिखते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और हमारे पास जो है संदेश पहुंचा है, ये संदेश किनका पहुंच रहा है, हाय गुड आफ्टरनून आनंद जी, आप कैसे हैं? ये संदीप सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप भी इस बिंदास बोल कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से।

और श्रोताओं, अगर आप हमें रेडियो पे सुन रहे हैं तो ही आप फोन करें। बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आ रहे हैं जो रेडियो तो नहीं सुन रहे हैं लेकिन लगातार फोन किए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रोग्राम ही नहीं पता होगा, अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन आपका होस्ट है, तो फिर आप ऐसे कॉल करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। चलिए, फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक, किसी ने मुझे इस गाने की रिक्वेस्ट की है, ये गाना सुनते हैं आप और मैं, हम साथ में एंजॉय करते हैं। और बाकी आप भी अगर कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो बिल्कुल आपका स्वागत है जी। आप हमें फोन कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं 9837 8968 96 पर। इंतजार है हमें।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और इस वक्त आप लाइव सुन रहे हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन पे मुझे यानी आनंद को। इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है शाम के 4:04। और देखिए ये जो घड़ी है ना वो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है श्रोताओं। और आज का दिन बहुत खास है, जैसे कि हमने बताया अपने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जमकर जो है पेड़ लगाए गए हैं, पौधारोपण बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है। अगर अभी तक आपने कोई पेड़ नहीं लगाया है अपने घर के आसपास तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने रेडियो शो के जरिए आप भी घर से बाहर निकलिए, जाइए एक अच्छा सा पेड़ खरीदिए और उसको लगाइए अपने आसपास के पार्क में या ऐसी खुली जगह पर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पेड़ ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ लगाकर भूल मत जाना, उसको अच्छे से जो है उसको पानी भी देना है, उसको सींचना भी, उसका ख्याल भी रखना है ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई, आपकी हुई ना। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप बने हुए हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास बोल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, आदाब
0: जी। आपको भी आदाब, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं।
1: जी सर, मैं सूरत खेड़ा जिला मुरादाबाद से निशा बात कर रही हूं।
0: जी निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ प्रोग्राम में। बताइए निशा जी।
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए।
0: मैं भी सब एकदम बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शाम का समय है, लोग कुछ चाय की तरफ भागेंगे, चाय पीने की तरफ, तो कुछ लोग अपने काम से निकलेंगे बाहर। ये टाइम वो होता है ना जब बस हर इंसान मम्मी के साथ थैला उठा के सब्जी लेने जाता है।
1: जी सर।
0: शाम का टाइम ऐसे ही होता है। खैर एनीवेज, आपकी तरफ मौसम कैसा है? बहुत गर्मी, ये जितनी बारिश हुई है उससे ज्यादा गर्मी हो गई है ना।
1: जी सर, बारिश होने के बाद में काफी गर्मी हो जाती है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, बस एक दो दिन ही थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल लगता है, उसके बाद गर्मी और ज्यादा लगने लगती है।
1: बिल्कुल सर।
0: अच्छा आपको निशा जी बारिश का मौसम कैसा लगता है, कैसा लगता है बताओ आप मुझे।
1: मौसम सभी अच्छे लगते हैं, हमें हर मौसम का मतलब आनंद उठाना चाहिए हर मौसम में। ये नहीं है कि हमें मतलब बारिश अच्छी है, सर्दी अच्छी है, गर्मी,
0: और हर मौसम का अपना एक अलग आनंद है।
1: जी सर, ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें ठंडी
0: ठंडी चीजें खाने का मजा होता है, और थोड़ा बारिश में चाय पकौड़े ये सब चीज खाने का अच्छा लगता है। मन जी, मन करता है खूब सारा कि कुछ ऐसा खाया जाए, चटपटा सा, यू नो। और सर्दियाँ आती
1: है तो कभी कभी धूप निकलती है तो धूप में बैठने का भी मन अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन को सुकून मिलता है धूप में बैठकर, और इतनी सादी इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां सर्दियों में मिलती है देखने को, कलरफुल। तो हर मौसम में अपनी एक यू नो खासियत है ना। बहुत बढ़िया। और निशा जी आप क्या करती हैं, थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को।
1: सर हम घर पर ही रहते हैं और अपना मतलब छोटा ही काम है, हम अपना काम करते हैं।
0: चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। आप जुड़ी हमारे प्रोग्राम में निशा जी, इतनी
1: लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाते ऐसे, लेकिन आप रोज के 400-500 हो जाते हैं, हमारे कम लग बहुत है भाई।
0: चलिए आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम दुआएं करेंगे आप ऐसे ही और ज्यादा तरक्की करिए और ज्यादा पैसे कमाइए, खूब सारे पैसे जोड़िए अपने लिए, अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, बहुत जरूरी है। देखिए अपने टाइम को जो है ना अच्छे से यूज करना चाहिए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसी पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सही बात, आपको जज करने की जरूरत ही नहीं, किसी और से क्यों जज करना है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा निशा जी आपसे बातचीत करके। और आज आप जुड़ी चुकी है प्रोग्राम में, तो क्या सुनेंगी या फिर हमारी पसंद का सुनेंगी?
1: आप अपने पसंद का कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट कर दीजिए सब सुनने वालों।
0: चलिए जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा निशा आपसे बातचीत करके, और जल्दी फिर जुड़ेंगे तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। ओके,
1: थैंक यू
0: सो मच। ये निशा जी जुड़ चुकी थी हमारे साथ। और श्रोताओं जैसे कि मैंने आपको कहा था हमें एक प्रोग्राम की ओर निकलना है, तो बिल्कुल अब हम आपसे जाने की इजाज़त लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे और भी काम करने होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो रेडियो के बाहर निकलते हैं, हम रेडियो की दुनिया से बाहर निकल के देखते हैं बाहर की दुनिया में क्या कुछ खूबसूरत चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल बात चलिए मेरी पसंद की, यानी कि एक अच्छा सा ऐसा गीत चला दीजिए जो सभी को पसंद आ जाए, तो आई एम श्योर मैं जो गाना चला रही हूँ डेफिनेटली सभी को पसंद आएगा, बिकॉज गाना इतना खूबसूरत है यार। और ये गाना कभी कभी मैं सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपनी हर एक गाने की खूबसूरती होती है और हर एक गाना अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, वैसे ही ये गाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ठीक है जी, इस गाने को सुनते हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये है प्रोग्राम बिंदास बोल, मैं हूँ आपका दोस्त आनंद, और ऐसे ही ये माहौल बनता रहेगा। लेकिन फिलहाल तो ये सिलसिला अब रुकने वाला है क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा यार, लौट कर आती है एक और कॉलर के साथ। गुड आफ्टरनून।

0: क्या बात है, देखो चुप रहने की जरूरत तो नहीं है बॉस, अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही सुनते रहिएगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन को, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। श्रोताओं, फिलहाल ये घड़ी की सुइयां मुझे और ज्यादा वक्त जो है नहीं दे सकती हैं कि मैं आपके साथ और ढेर सारी बातचीत करूं, लेकिन आप ऐसे ही सुनते रहिएगा, डेफिनेटली आपका ये स्टेशन ऑफ द नेशन है जहां ढेर सारी बातें होती हैं। 4:16 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, प्रोग्राम है बिंदास बोल और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग हो गई क्या, मैंने तो गुड आफ्टरनून बोल दिया था शायद। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अंदर बैठ के पता नहीं चलता ना टाइम का, यहाँ सुबह शाम सब कुछ एक जैसा ही लगता है। जी आप बताइएगा, कौन बोल रही है मैम, कहाँ से फोन किया है आपने?
1: सर मैं जिला मुरादाबाद, ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: अच्छा निखत फातिमा जी, वो आपसे पहले कॉलर थी निशा जी, उनके पास भी बिल्कुल आपकी तरह ही थी।
1: अच्छा सर
0: जी, आपके पीछे रेडियो चल रहा है क्या मैम?
1: हाँ सर, रेडियो तो ऑन ही है।
0: तभी मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है।
1: अच्छा सर,
0: तो थोड़ा सा या तो आप अलग
1: आप नहीं दे रही होगी सर, अब मैं अलग हो गई।
0: वेरी नाइस, चलिए थैंक यू सो मच। और बताइएगा आप कहाँ कहाँ रहती हैं, आपने कहाँ बताया, रामपुर में?
1: नहीं सर, गोदी में रहती हूँ मैं, मुरादाबाद में ही पढ़ता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो क्या करती हैं अभी आप निखत फातिमा जी?
1: कुछ नहीं सर, घर पे ही रहती हूँ मैं तो।
0: चलो बहुत बढ़िया, तो आप मतलब पूरा दिन एंटरटेनमेंट का डोज लेके घूमती हैं घर पे, रेडियो सुनती रहती हैं आप?
1: रेडियो ऑन रहता है मेरा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आपको अच्छे लगते हैं हमारे प्रोग्राम्स?
1: हाँ सर, बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो जुड़े हैं।
0: बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये होना भी यही चाहिए, जब लिसनर्स हाँ आपके साथ जुड़ते हैं तो बहुत मजा आता है।
1: हाँ सर, हमें भी बहुत ही मजा आता है।
0: अच्छा ये बताओ आपको कौन सा मौसम पसंद है?
1: मुझे मौसम तो सारा ही पसंद है, क्योंकि जो भी मौसम आए उन सभी को एंजॉय करना चाहिए।
0: करेक्ट, और हर एक मौसम की अपनी खूबसूरती होती है ना।
1: हाँ सर, मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है।
0: अरे वाह, वेरी नाइस, लवली। बारिश का मौसम में आपको क्या चीजें तो बहुत अच्छी लगती है, बारिश में भीगना या कुछ और, चाय पकौड़े खाना, क्या चीजें जो आपको अच्छा लगता है?
1: हाँ सर, चाय के साथ पकौड़े और बारिश में नहाना सबसे ज्यादा पसंद है।
0: वेरी नाइस, लेकिन बारिश भी ना बस एक टाइम तक ही अच्छी लगती है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ।
1: हाँ सर, अभी 3 दिन लगातार हो रही थी ना तो मन भर गया था।
0: हाँ वही ना, फिर तो धूप याद आने लगती कि यार अब तो धूप निकलनी चाहिए।
1: हाँ सर, कपड़े भी इतने हो गए थे, मतलब सूख नहीं पा रहे थे वो।
0: वही वही वही, दूसरी बात, हम जब कहीं बाहर जाते हैं और लगातार बारिश हो रही हो तो कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं हम।
1: हाँ सर, और हम लेडीज को ना सबसे ज्यादा कपड़ों की टेंशन रहती है।
0: नो डाउट, हमारे घर पे भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं अगर जब बारिश, क्योंकि सुखाने की सबसे बड़ी दिक्कत है।
1: हाँ सर, सुखाने की बहुत दिक्कत है।
0: इसीलिए 2-3 दिन की बारिश के बाद फिर सब कहते हैं अब तो सूरज चाचू निकल जाओ।
1: हाँ सर,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आप हमारे साथ जुड़ी,
1: अच्छा लगा,
0: थैंक यू सो मच। आप कौन सा गाना सुनेंगे आज निखत जी?
1: सर मैं सॉन्ग सुनूंगी परदेसिया, इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गीत है, चलिए सुनते हैं साथ में मिलके। बहुत बहुत थैंक यू आप जुड़ी,
1: बाय बाय,
0: थैंक यू। श्रोताओं फिलहाल तो अब मेरा जाने का समय हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और अब इसी ट्रैक के साथ हम लेंगे आपसे जाने की इजाज़त। बहुत ही प्यारा ट्रैक आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं, और ढेर सारे संदेश भी हमारे पास पहुँचे, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।

ढेर सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं। हाय नमस्ते सर जी, आई होप आप मस्त होंगे, गुड इवनिंग आपको। जी जी, थैंक यू सो मच, आपको भी वेरी गुड इवनिंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस ट्रैक को सुनते हैं और उसके बाद हम लेंगे आपसे जाने की इजाज़त।

0: श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था, मुझे सुन के बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर आपको भी आया होगा। फिलहाल अब मैं आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, जल्दी होगी आपकी हमारी मुलाकात इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप रखिए तब तक अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही गुनगुनाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। श्रोताओं, फिलहाल 4:25 हो रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप दिल्ली रोड है, स्टेशन रोड है, कांच रोड है, या फिर आप हैं जीरो पॉइंट की तरफ, गागन की तरफ, आप जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ऑल द बेस्ट आप जिस भी काम से जा रहे हो। और फिलहाल जो लोग मुझे सुन रहे थे उन सभी का दिल से थैंक यू गाइस।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
0: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत मुस्कान और ढेर सारी यादों के साथ अब आपसे मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। जी हाँ दोस्तों, इजाज़त लेने का वक्त हो गया है और उम्मीद है आपका संडे जो है बहुत ही प्यारा गया होगा। और ये जो संडे का दिन है ना, अपने आप में बहुत ही प्यारा होता है, बेहतरीन वाइब का दिन होता है। रविवार का दिन वैसे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन देखिए हमारी छुट्टी तो आपके साथ होगी ना खूबसूरत। फिलहाल अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा और अभी मेरा जाने का समय हो रहा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि संडे जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियाँ देकर जाए, आपका ये संडे थोड़ा और रंगीन हो जाए, थोड़ा और खुशनुमा बन जाए। फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, खूब सारा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि यहाँ दिल से जुड़ती है हर बात। अब फिलहाल होगी एक और नए दिन में आरजे आनंद की एक नई मुलाकात, तब तक के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ठीक है जी, कुछ कहना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे मुझे ढूंढ सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ। ऑफिशियल आईडी है हमारी FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। 4:28 एक खूबसूरत ट्रैक छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, वर्षा सिंह की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति, जल्दी मिलेंगे आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
5: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की एक छोटी सी गलती एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है आजकल ऑनलाइन फ्रॉड फेक OTP कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं याद रखिए कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका OTP ATM और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगी यानी कि शिकार बन जाते हैं और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं यहाँ पर डर जाते हैं सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है
5: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी
4: तो सबसे पहले आप बताइए सर कैसे हैं आप
5: बहुत बढ़िया और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में
4: क्या बात है लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब PhD भी कर रखी है आपने एडवोकेट
5: PhD मेरी ऑनरिस कोर्स में है मानत उपाधि जिसको बोलते हैं तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है उनको हेल्प करता हूँ तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था
4: तो मतलब PhD के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में
5: देखिए जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं पहले फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है MBA करना चाहिए किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए फिर मैंने MBA किया MBA के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ कुछ हैपनिंग हुई मैंने कहा नहीं अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं
4: और मुझे लगता है कि सर जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: तो सर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है
5: देखिए हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है वो एकदम 10 रुपए में मिलती है तो कस्टमर क्या होता है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है उसी लालच में हम क्या करते हैं किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पे हम क्लिक करते हैं क्लिक करके क्या होता है जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
4: उसके फोन में कनेक्ट,
5: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना। आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ आप किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
5: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि भाई जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
4: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
5: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
4: एक आसान जरिया।
5: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपके अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
4: बिल्कुल
5: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
4: पैसे चाहिए थे
5: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
4: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
5: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी दे दी। तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
4: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
5: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि, जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगता है?
5: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
4: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
5: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
4: बिल्कुल करेक्ट।
5: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें। तत्काल उसको, फोन को ब्लॉक कर दें, और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेडिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
4: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
5: एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
4: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
5: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर, आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
5: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल

0: से आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है आपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे हाँ, उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
1: ये बिल्कुल वही
0: भाई रीना को पैसे की जरूरत है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है और किसी को भी आप अपना फोन इस अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
1: बिल्कुल
0: नहीं देना,
1: देना है।
0: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओं। और
0: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
1: बिल्कुल, और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करी कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर, ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
0: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
1: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा,
0: मैसेज क्यों करेगा,
1: क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
0: तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
0: देखिए डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं, कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ED से हम बोल रहे हैं, कभी CBI से, सॉरी, कभी वो CBI या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात।
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
1: नहीं है,
0: ठीक है, किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें, या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो फ्रेंड प्रूफ मिल गया उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, हम चाहते कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की दो टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं, कोई क्यूरियोसिटी ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में, जैसे कोई एकदम एडवर्टाइजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती उसी तरीके
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपके बेनिफिट की नहीं हो सकती, है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अब क्या है धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता, जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है,
1: बिल्कुल,
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए, अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी, टाइमली आपने एक्शन लिया है तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
1: जल्दी करी है ना? बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे हाँ, पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
0: आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश
1: करेगा।
0: जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई वो वापस आ जाए।
1: सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
0: देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे,
1: इग्नोर करना है।
0: हाँ। तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आदत है ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं, कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
1: क्या बात है।
0: ये
1: सर, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है, तो मैं यही बस अभी तभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है ये हमारी, है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइलों का अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
1: पड़ सकती है।
0: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है OTP, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें और अवेयर रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे, इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, एक खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूँ भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
0: जी,
2: जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता
0: है। करेक्ट करेक्ट।
2: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
2: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
0: बहुत जरूरी है।
2: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
0: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
2: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देके जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
2: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
0: आई थिंक
2: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
0: क्या बात है।
2: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
0: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है।
2: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
0: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग
2: सीखना
0: है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना।
2: बिल्कुल।
0: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
2: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
0: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
2: देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
1: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
2: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके,
2: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
0: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
2: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
2: PIL,
0: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: लिटिगेशन के बारे में बात।
2: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
0: ठीक है,
2: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
0: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
2: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
0: करेक्ट,
2: उसको बैठ के
0: समझौता किया जाए, बेसिकली
2: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कम्पनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
0: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
2: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
0: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
1: जी। हाँ,
0: बिल्कुल। यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
2: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
0: हाँ, ठीक है,
2: सुनी होगी ना?
0: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
2: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
0: करेक्ट
2: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
0: राइट,
2: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
0: ठीक है,
2: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं। या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है,
0: ओके,
2: ठीक है,
0: अच्छा,
2: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए,
0: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
2: बिल्कुल,
0: तो पब्लिक
2: की बात होनी चाहिए,
0: करेक्ट।
2: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
0: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
2: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
0: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
2: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
0: पब्लिक के लिए ही,
2: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
0: राइट,
2: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
0: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
2: है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
0: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
2: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
0: अच्छा, जो अभी अपन ने हमें एक्सप्लेन किया,
2: हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेस हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम
0: आवाज उठाना और
2: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और दूसरे एप्लीकेशन।
1: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
2: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
0: ठीक है,
2: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते उसके लिए, और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
2: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
0: ठीक है,
2: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
0: ठीक है,
2: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
2: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेट पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
2: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
0: करेक्ट, अरावली। हाँ,
2: तो अरावली हिल्स क्या था, अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
0: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है, आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे, ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
2: देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हम दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
2: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म
0: सर, मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
2: लिटिगेशन।
0: यार पब्लिक सीखने को मिली,
2: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
0: जी जी सर,
2: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके
2: ठीक है।
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं। और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए। हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करना
1: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तुम ये।
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
1: हाँ तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
2: यस बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
1: क्या बात है।
0: अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
2: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
0: एब्सोल्युटली 100%
2: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है। और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी कर रहे हैं, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए।
0: नहीं होना चाहिए,
2: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
0: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
2: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता से।
0: तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
2: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
0: करेक्ट करेक्ट वही ना,
2: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
2: हाँ
0: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
2: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: याचिका
2: रहती है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
2: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
0: ऑल राइट सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया. और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में. एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे तो हमने आपको अभी बता दिया है. सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे. एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना. और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
2: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
0: जी जी
2: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
0: भी अपने ऐड कीजिए,
2: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM.
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला. और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
2: अच्छा,
0: के लोग
2: हैं. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं,
0: जी सर,
2: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
0: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
2: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है. जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं.
0: गॉट इट सर. और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे लेकिन में पता भी
0: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
1: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
0: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायुनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी.
1: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
0: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
1: देखो हम घर पर भी बना सकते हैं,
0: वो मुझे नहीं पता. फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
1: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
0: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. बहुत बहुत स्वागत है आपका. आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है. इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को पसंद आती है. और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है. और इस प्रोग्राम को धांसू बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुनकर मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया. हेलो जी, हाउ आर यू?
7: कैसे
0: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है.
7: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
0: धासु वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं.
7: आपके धासु वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
0: कोई शायरी मारूं.
7: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
0: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप बिल्कुल धाकड़ आरजी बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
7: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
0: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
7: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
0: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा, तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
7: बहुत,
0: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
7: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है, उसे
0: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है,
7: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
0: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
8: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी बहुत बढ़िया है सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
8: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
0: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
8: सर तारुफ हुई पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक।
0: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है,
8: कपड़े
0: तो
8: चेंज
0: हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले क्यों अखिल जी?
8: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी इंट्रोडक्शन है पुराना वाला ही चल रहा है।
0: जो नए लोग सुन रहे हैं,
8: उसमें
0: देखिए पिछली बार जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
8: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
0: जी जी,
8: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
0: आज बहुत बढ़िया।
7: आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए, और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है, और जितने भी हमारे लिसनर
0: सभी का सवाल है
7: कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
8: सही कहूं तो मेरे लिए एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूं, कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूं, तो मन में बहुत सेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है, अलग हटके कुछ
7: तो
8: किया।
7: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई? मतलब
8: आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
0: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जाना है। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
7: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
0: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
8: अखिल जी क्योंकि खुद शादी शुदा था, वो
0: इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझ ही होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे, क्यों अखिल जी?
7: बिल्कुल सही बात।
0: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
7: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
0: तो थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
8: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी।
0: हाँ, बिल्कुल आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
8: मौसम काफी ठंडा,
7: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहे हैं।
8: बिल्कुल, क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखेगा गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
0: वाह
8: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ।
0: वाह जी वाह,
8: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के मैं मानसून की बारिश हूँ।
0: क्या बात है? मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना बारिश वाला,
7: एकदम
0: तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद, आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, खूबसूरत गाना उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे जिसमें कोई इतनी शोकती नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर
1: बस
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया है मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है, क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है।
2: चल
0: जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत लेना ना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा।
1: मैं हो गया हूं कि थोड़ा सा चाहता हूं कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू
0: बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है। हाँ, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: जनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई। मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी। प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा, दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्तियाँ आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर बस... कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे। खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है। और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले,
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना

0: से शानदार करेंगे। आपने वो मॉनसून वाली चार लाइनें सुना दी, तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
1: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
1: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
2: क्या बात है,
1: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
1: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना, वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
1: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
2: कि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं, थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
2: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं दिल से दिल तक करते करते।
2: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है ये तो, बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाए।
1: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
1: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी, मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
2: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
1: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है, आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
2: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
1: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
2: नहीं
1: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
2: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
1: दोनों ही चीजें हैं,
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर,
1: मैंने कहा ना दोनों ही चीजें,
0: हाँ हाँ नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है,
1: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है,
2: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
1: मोबाइल की बैटरी के साथ तो मजबूरी है उसको चार्ज होना ही होना है, लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
1: मतलब
0: क्यों, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है, और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
1: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा, एक काम करते हैं गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
2: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं, प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से
1: आज मैं अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास कि मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतनी कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो तिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ये बताइए सर, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा है।
1: ये सी चला दें कि अगर आप कहें तो
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा कि ये अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो
1: सर, ऐसा तो देखिए अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था इतनी आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है,
1: समझ सकते
0: हैं। आइए कमल जी आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर व शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं।
1: वाह,
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं।
0: क्या बात है,
2: नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात, क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं।
0: बहुत खूब,
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं, हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं।
0: क्या बात,
2: हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया अपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती है।
2: ये तो मैं पूरा कर लूं पहले।
0: हमें
1: लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं।
1: वाह,
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है।
2: आप देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूँ मैं, स्मार्ट हूँ स्मार्ट हूँ फिर भी कहीं अपवाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चैलेंज देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया,
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं।
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए।
1: आपने कभी देखा उसके अंदर मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी, देखो ना जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटे लाइटे और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
0: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई
1: तभी भाग जाती है? ऐसा तो नहीं होता,
0: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट वहां पे मिलती क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो मुझे पता है आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है, उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
2: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
1: ये तो
0: कमल जी बचा रहे हैं,
1: तारीफ करिए,
0: लाइट लेके गए कमल जी ने बचा दिया उन्हें आज।
1: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है, तो एक काम करते हैं इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
1: वाह वाह वाह,
0: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
1: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
0: हाँ, वो उसके बाद जो खामोशी आई थी समझ में आ गया था कि आपको बात समझ नहीं,
1: मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटी सैटी और अमेजिंग अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
2: बिल्कुल सर, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी।
0: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
2: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा।
1: सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी हैं जो दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
0: इसके ऊपर कोई शायरी है?
1: हाँ,
2: अब इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
1: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
2: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर ला दूं, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
1: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं है वैसे अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर शायरी।
0: नहीं, ये काम व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
1: हाँ, नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है, तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
0: क्या बात कही,
1: अच्छी बात है ना,
0: वो तो घर बसा लेगी आप आनंद जी, ऐसी लिखते रहो मेरे लिए, वाला घर बसा जाएगा।
1: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी ना चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो, ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है, क्यों अखिल जी?
0: बिल्कुल सही,
1: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं और कुछ बढ़िया से सुनते हैं।
0: भारत कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: 13 साल।
0: 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
1: क्या बात है, बट हम उस एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम
2: आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं है।
1: हाँ, आज उससे
2: 4-5 साल का।
1: अच्छा, जो अब लिखते लिखाते हैं आप ये वाला, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
0: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
1: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, तो बच्चे स्कूल जाने वाले
0: कल से,
1: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
2: तो उसके तो मानसून की चाली पहले चिपका देना।
1: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
0: ये फेविकॉल का एड था जो कमल जी कर रहे थे।
2: चार पंक्तियों में जीवन की सच्चाई देखेगा कि जिंदगी क्या है।
1: अच्छा चलिए, बिल्कुल सर,
2: कि अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई।
1: वाह वाह,
2: अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई, नींद दहाई ख्वाब सैकड़े और खुशियां हैं एक इकाई।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है कि कमल जी की शायरी सुनकर तो मुझे कॉलेज के दिन ही वापस याद आ गए। तो नेहा जी आपको, मतलब कमल जी हमारे इतने भी पुराने नहीं है, मगर हाँ शायरी उनकी बहुत ही अंदर तक जाती है, तो पुराने दिन तो हमेशा सभी को याद आ जाते हैं।
1: True, got it, एकदम, I agree with you. बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर व शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, तो हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
0: चार लाइनें सुन के मेरी बाबा कर देते, उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं, ये अपनी बात बोल देते
2: यार। मुझे कहना पड़ता है कि पूरी तो सुन लो,
1: पूरी मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों।
0: हाँ, पूरी कीजिए आप पहले। हाँ, आपकी वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना।
2: नहीं, जो मुझे भी पता चल जाता है कि चाइल्ड को दम था या नहीं था।
0: देखा, चुपर उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए, जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
1: बिल्कुल सर।
2: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: वाह,
0: बहुत खूब।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: जी जी।
2: वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं। वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
0: क्या बात है।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: बहुत सही बात कही आप, दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही। मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
1: क्या बात है, बिल्कुल। आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं। बहुत अच्छी आपने दी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं। फिलहाल तीन लोग बैठे हैं, मजे की बात ये है,
0: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
1: बिल्कुल, ये बचपन से हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
0: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है। आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर, कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटू सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
1: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाएगा, अभी किसने कुछ नहीं जाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस, अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं। मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आपका ही मजा।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है, तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, गलत
0: दिल से दिल तक चल रहा है,
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना शख्स कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता है।
1: कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है।
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, आप भी तो शादी शुदा है। मैं ये बोल बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल, आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। सपाट अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसा आप लोगों की महफिल है
1: जी, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका महफिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा
2: नाम, जो जाना माना नाम होता है।
0: ये स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने
1: जी,
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह बात, क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने, आओ कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कर रही
2: है, की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: दिखते हैं, क्या बात है, क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जब वो दिल से लिखते हैं ना, और जब वो दिल से सुनाते हैं तो वो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आए, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में,
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी, बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में ला के आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पर थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको ऑब्जर्व करना है।
2: मुझे तो दिल से मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया,
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: नहीं, अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं, खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना
1: जी
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं,
1: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज,
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो। हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: और सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले।
0: हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
1: वाह क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल
0: जो
1: कर
0: लोग
1: दिया।
0: आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही
0: कहा। और ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
2: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई
1: सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे, कुछ अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती पे अगर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
2: चलिए साहब, जैसा हुक्म है।
1: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती, मिलना मिलाना, महफिल, इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
1: क्या बहुत बढ़िया, खूबसूरत।
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा। बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा, बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है।
2: बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही। जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया,
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहे, है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चलें अपना पोटला उठा के, बातों का पिटारा लेके।
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है। तब तक के लिए मैं यानी आरजी आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी अस्थमा न्यूमोनिया

या खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं, जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
4: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
6: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
4: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, एंड K4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
5: बहुत बढ़िया।
4: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे ही फ्लू फ्लू में बोल दिया?
5: नहीं, पहले आ चुके हैं यहाँ पर।
4: अच्छा, प्रोग्राम, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
5: मे बी शायद टाइम
4: नहीं, हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए।
5: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
4: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
6: संडे इज लाइक फंडे ना।
4: सही बात है,
5: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
4: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, अब समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
5: सूत्रों से?
4: हाँ, लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
6: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट
4: रैंडम आती है,
6: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
4: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको आरजे में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहां फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
5: मेरा नाम कमल शर्मा है
4: जी।
5: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
4: अरे वाह।
5: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
4: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा,
5: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
6: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
4: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
6: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
5: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होते हैं, अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
4: अंदर का जो शायर हो बाहर आ ही जाता है।
5: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
4: अच्छा,
5: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
4: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
5: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों
4: में। मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा।
5: माध्यम से?
4: बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
5: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल, जी। जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
4: वाह।
5: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
4: क्या बात है।
5: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
4: वाह।
5: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी है।
6: अरे क्या बात, बहुत खूब।
4: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
5: बिल्कुल,
4: है।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: ये तो आपने सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं, ये जो मस्ती है, जो फन है, वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए। क्यों अखिल जी,
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सफार तो चलता रहेगा श्रोताओं। फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती एक कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी
0: दे दो
1: और आत्मा कह रही है गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात
2: बहुत
0: है।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर हाँ। वाली डाई दे दो।
0: चलिए मैं आपको
1: कली करवा लिया था, मैंने कली करवा लिया था।
0: हाँ सर को देख के लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा।
0: सर बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी
2: जैसे मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पढ़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा
1: है
0: अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए। सर
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: नहीं, मगर
0: की
2: ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी,
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खाते ने रखी है।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन फिलहाल आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने की आदत
1: हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, आप जॉब करते रहते हैं, आसपास में चल क्या रहा है।
1: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गया, माइनस पॉइंट गया, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कुछ सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: मैं आपकी बात
1: नहीं करना चाहता, ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल है तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट,
0: बहुत
1: था,
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, हो सकती है
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उगाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आप कहीं मत जाइए, सुन रही आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद। और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर व शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म
1: हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। कैसे कि रास्ते से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। पहले आगे बढ़ते हैं। और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम करके जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पर पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली जल्दी
0: है ना, मैं ज्यादा
2: मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें क्या आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह
1: क्या
0: बात है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है।
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही खूब। जी अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साइज निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जी कमल सर।
2: यस सर।
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना, आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया, आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तू जेन्युइन नहीं है। आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती है। ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
2: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस
2: पहले आप, पहले आप,
0: पहले आप,
2: और ट्रेन निकल गई। ट्रेन चली गई लखनऊ से।
0: सही कह रहे हैं
2: बनारस।
0: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए, हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं।
2: अगर जी, अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: डेडिकेट करना चाहूंगा। जरूर सुन रहे होंगे
2: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था।
0: अरे वाह।
2: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी, एक समाथी हर परवाना का था।
0: क्या बात है।
2: एक समाथी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब।
2: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
2: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह क्या बात है। राघव जी देख लो, सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में भी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया। अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं।
1: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी, कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जो वो लिखते हैं, और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही होगी आई एम श्योर।
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
1: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
1: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
1: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
1: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम, गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते हैं ना, छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
2: अब अखिल भाई इतने समय से वो पन्ना खोलना चाहते, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
1: तैयार में।
2: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिलना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
1: क्या कहा है?
2: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत क्या बात, बहुत ही खूब, बहुत ही।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने,
0: जबरदस्त,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
2: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी,
2: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरों में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
2: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
1: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
1: अंदर से, अंदर से निकल के
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये, वाह जी वाह, गजब,
1: अंदर से निकल के आई है,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है

को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो गीत आपके नाम से। संडे की प्यारी सी शाम, हल्की हल्की हवा, थोड़ी सी गर्मी और ढेर सारे म्यूजिक लेकर मैं आ गई हूँ। अगले घंटे तक आपके साथ रहने वाली हूँ, बातें भी करेंगे, मुस्कुराएंगे भी और आपके फेवरेट सॉन्ग आपके दिल के सबसे करीब वालों को भी पहुंचाएंगे। जी हाँ, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप अगर उनको कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या खुद के लिए भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो फटाफट से आप मुझे कॉल कीजिए। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। So stay tuned because this evening is all about happiness, memories and beautiful music. तो चलिएगा एक ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ अपनी तरफ से, तब तक आप मुझे कॉल कीजिएगा। इस संडे की शाम को बनाएंगे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मुझे पता है आप पूरे दिन काम करके थक गए हो और दोस्तों जब हम ट्रैवल करते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, राइट? किसी के लिए संडे आता है बहुत ज़्यादा यू नो फन, मस्ती करने वाला, घूमने वाला, एंजॉय करने वाला, और किसी के लिए संडे आता है ओहो हो, संडे आते ही इतने सारे काम नज़र आ जाते हैं ना कि संडे कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन काम कंप्लीट नहीं होते हैं। हाँ, तो आपकी शाम को बेहतरीन बनाने के लिए खुशी यहाँ पर आ चुकी है और एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा से। तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना, सोलफुल आवाज अरिजीत सिंह साथ में शिल्पा राव की, फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा से। और इस फिल्म में कितने खूबसूरत नजर आए आमिर खान साथ में करीना कपूर जी। दोस्तों, हवाओं में ठंडक हो या मौसम में गर्मी, दिल में अपनों की मिठास पसी रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वही खूबसूरत होती है जिसमें अपनों की याद और गीतों का साथ बना रहे। मैं आपके साथ हूँ, अब आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। संडे की शाम को हमने आपके नाम किया है, अब आपका काम है जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 9837896896। ये है आपके अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। तो अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, जानेंगे आज की शाम वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो सर,
1: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मनोज वर्मा
0: जी लाइन पार से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप। सब
1: ठीक है, आपके परिवार में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा आपके परिवार में सब कैसे हैं, और आप बताइए सर क्या करते हैं?
1: जी, मैं जो है अकाउंटेंट हूँ, मैनुअल में अकाउंटिंग करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और रेडियो का शौक कब से है आपको?
1: रेडियो तो हम काफी टाइम से सुनते हैं, लगभग 15-16 साल की उम्र से, लेकिन पहले एफएम नहीं चलता था।
0: अच्छा,
1: ये एफएम का जो जो है अभी हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ, पहले वो आकाशवाणी रामपुर नजी आवाज वगैरह, ऑल इंडिया रेडियो।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: ये सब चला करते थे मैडम।
0: लगता है कि रेडियो के बहुत बड़े दीवाने हैं आप।
1: काफी तरह की जो है न्यूज वगैरह मिलती है, जी जी
0: जी बिल्कुल सर,
1: अगर की खबरें हैं आप लोगों से बात होती है
0: जी। और बताइएगा खाना खाया आपने?
1: खाना मतलब तैयार है, 10-15 मिनट में खाएंगे, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा लगा हमें जानकर आपसे। बताइएगा सर आज की शाम आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: वो सुना देना, मैंने प्यार किया था, पग पग लिए जाऊं चोरी भलैया में।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। फिल्म देखी है आपने सर?
1: हाँ जी देखी है।
0: कितनी बार देखी है जरा बताइएगा?
1: देखी तो एक ही बार है, उस समय
0: पढ़ते थे। अच्छा ओके, तो दोबारा देखने का मन नहीं किया आपका?
1: मन किया लेकिन बस फिर बाद में थोड़ा ऐसे हो जाता ना, मैडम जो पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है।
0: हाँ जी
1: हो जाते
0: हैं। जी जी जी, सारी चीजों को देखना पड़ता है जब समय के साथ।
1: जी जी,
0: तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखी तो क्या हुआ, गाना तो हम सुनवा सकते हैं ना आपको।
1: जी ओके
0: जी, तो ये प्यारा सा गीत आप सुनिएगा, आपने कॉल किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक, शारदा सिन्हा जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, फ्रॉम द मूवी आपको पता है ना मैंने प्यार किया। और मैं बस लौट कर आने वाली हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, लेकिन आपको कॉल लगाना है लगातार, नंबर मैं बता रही हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गुनगुनाते रहिए, और ये प्यारे से चेहरे पर ना ऐसी ही मुस्कुराहट बरकरार रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी भी ना आपसे दूर हो जाएगी जब आप मुस्कुराएंगे। और ये प्यारे से गीत सुनिएगा।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है गीत आपके नाम से, आपकी संडे की शाम को खुशी बनाने आती है यहाँ पर बेहतरीन। और अभी आपने सुना बेहद प्यारा गीत, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। और ये गीत था फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया। इस गीत की एक खास बात यह है कि इसे लोक गीतों की समग्रानी माने जाने वाले शारदा सिन्हा जी ने अपनी मधुर आवाज दी थी। यही वो गीत था जिसने भोजपुरी और मैथिली लोक संगीत की मिठास को पूरे देश तक पहुंचा दिया था। इसी फिल्म का संगीत राम लक्ष्मण जी ने तैयार किया था और ये गीत अपनी सादगी, लोक धुन और भावनाओं की वजह से आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है श्रोताओं, फिल्म के निर्माता तारा चंद्र और साथ में बरजातिया शारदा सिन्हा जी की लोक गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खास तौर पर ये उन्हें ही ये गीत गाने का अवसर दिया। और कहते ना दोस्तों कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना सदाबहार नगमा। अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, जानेंगे उनकी भी रिक्वेस्ट आज की शाम वो क्या सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी आदाब।
0: आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेतांड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: एकदम अच्छे नेम, आप बताएं आप कैसे हो और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है सर?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआएं हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी सब बहुत ही अच्छे हैं। आप ये बताइएगा सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: देखिए मैम, मौसम तो काफी सुहाना हो रहा है यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर, और हवाएं चल रही है, काफी अच्छा मौसम हो रहा है मैम।
0: अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है?
1: जी काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मौसम वहाँ का सुहाना है। आप बताइएगा सर, आज की शाम आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: लेकिन मैम ऐसे सुहाने मौसम में मूवी है वक्त हमारा है।
0: हाँ जी।
1: और सुनने मौसम है मस्ताना, कुछ इस टाइप के बोले
0: जी।
1: और एक शायरी रच करना चाहूंगा मैम।
0: इरशाद।
1: अजब मौसम है मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का रिश्ता साथ चलता है, जब मैं सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलक तले दिल धड़कता है।
0: अरे वाह, बहुत प्यारी शायरी है आपकी सर, आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है।
1: एक रेस्टोरेंट पार्टी करने के लिए आए थे मैम गुरुग्राम के अंदर दोस्तों के साथ।
0: अच्छा अच्छा ओके, तो पार्टी करते करते सोचा कि अपना फेवरेट सॉन्ग भी सुन लेते हैं। ओके तो चलिए अपने दोस्तों के साथ आप सेलिब्रेट कीजिएगा और ये प्यारा से गाना भी सुनिएगा।
1: जी मैम, कुछ दोस्त मेरे साथ में ग्राम खेतांड से मोहम्मद कामिल सुनना चाहते हैं।
0: ओके सर, थैंक यू कॉल करने के लिए। दोस्तों मैंने कहा था ना कि संडे की शाम ऐसी होती है जब अपने अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जब हम फ्री होते हैं, है ना। और हमारे जो फीमेल्स इस वक्त मुझे सुन रही है ना, तो कुछ तो ऑन द वे कार में है जो घूमने के लिए जा रही है, और कुछ बेचारी जो किचन में खाना बना रही है। उफ गर्मी, भैया जल्दी जल्दी से खाना बनाओ और आराम से फिर जाकर एसी में बैठो, पंखे में बैठो या फिर बाहर आंगन में बैठो, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन में रहना इस टाइम लाइक खुद में अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर क्या करें, फैमिली का प्यार इतना मिल जाता है ना, तो फिर वो गर्मी भी गर्मी नहीं लगती है, है ना, ऐसा होता है ना। चलो आप कोई बात नहीं, किचन में हो तो टेंशन ना लो, ये प्यारा सा गाना सुनो, मौसम मस्त आना, थोड़ी सी राहत तो देगा ही और खाना भी जल्दी से बन जाएगा।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो। ओहो, बहुत सारे श्रोता बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं मैम कौन सा शो चल रहा है, तो मैं बताती हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। शो का नाम है गीत आपके नाम से, और टाइम भी बता देती हूँ, समय हुआ है 9:38, 9:39 स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। और अभी हमारी नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है, तो उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, हाय दी।
0: हाँ जी, क्या हाल है आपके?
1: मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आपके क्या हाल है?
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, गर्मी में से थोड़ा सा बेहाल है।
1: हाँ, तो बारिश नहीं हो रही है, बस तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है।
0: हाँ जी, वही ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। और अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रही हैं ये भी बताइए।
1: अक्का बीकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी पुरानी दोस्त अफसोस फातिमा बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ओल्ड दिस गोल्ड। हाँ
1: दीदी
0: बताइएगा, कैसे हाल है आपके, क्या कर रहे हो इस वक्त?
1: कुछ नहीं, बस इस टाइम पे तो सोने की तैयारी कर रहे थे, बिस्तर कर रहे थे सब।
0: अच्छा, सोने की तैयारी कर रहे हो। ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर। हाँ, कैसे मतलब निभाते हो आप, कैसे लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले मैनेज कर लेते हो?
1: नहीं दी, मेरी सिस्टर भी हेल्प करती है ना मेरी।
0: ओहो, वो तो खुश हो गई है अब कि चलो दी ने हमारा नाम तो लिया।
1: हाँ दी, क्योंकि उन्हें को भी बुरा लगता है ना दी, अगर वो करे और मैं बोलूं कि नहीं वो कुछ नहीं करती, तो उनको बुरा नहीं लगेगा?
0: हाँ, लगेगा ना। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बहनें अगर छोटी बहन से थोड़ा सा भी काम के लिए बोल देती हैं और वो हेल्प कर देती है, तो लगता है कि हाँ बहुत काम कर दिया, चलो अब थक गए हो, बैठ जाओ, अब मत करो कुछ।
1: बहुत सहारा भी मिल जाता है।
0: हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प मिल जाती है, तो अच्छा भी लगता है, सब मिल बांट कर काम करते हैं।
1: हाँ जी,
0: ओके।
1: लेकिन जी मतलब ऐसा होता है ना, जो बड़ा होता है ना उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां होती हैं।
0: हाँ, और वो बड़े ना जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते भी अच्छे से हैं, थक भी जाते हैं तो भी वो रियलाइज नहीं कराते, ऐसा एहसास नहीं कराते कि हम थक गए हैं, कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे सब।
1: हाँ दी, क्योंकि वैसे ही क्यों मैं समझ सकती हूँ दी, जो भी बड़ा है ना, मतलब मैं खुद सिस्टर में बड़ी हूँ अपनी,
0: हाँ
1: तो इसलिए मुझसे जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो बस अगर मैं थक भी जाती हूँ तो मैं मतलब ये नहीं कहती कि हाँ, अगर मेरी सिस्टर बोले कि हाँ मैं थक गई हूँ मुझसे काम नहीं होगा, लेकिन मैं किससे कहूंगी
0: एग्जैक्टली। यार सही कह रहे हो आप। वैसे ये बताओ कि अगर 10 मिनट में कुछ बनाना हो झटपट सा, जो हेल्दी भी हो और फटाक से बन जाए 10 मिनट्स में, तो ऐसा कौन सी चीज है बताओ आप मुझे जो जल्दी बन जाए।
1: 10 मिनट में तो भी मैगी बन सकती है, फिर मैक्रोनी बन सकती है,
0: उसके अलावा
1: उसके अलावा तो दी चाय।
0: दाल चावल बनने में कितना टाइम लगता है?
1: नहीं दी, दाल चावल नहीं बनेंगे 10 मिनट में।
0: दाल चावल बनने में कितना टाइम लगता है
1: दीदी? क्योंकि दाल बनने में टाइम लगता है, चावल एकदम बन जाते हैं।
0: दाल डिपेंड करता है ना कि कौन सी दाल है।
1: अगर मसूर की दाल मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है।
0: अच्छा, तो कितने सीटी में बना लेती हो आप वो दाल?
1: 3-4 सीटी में बनती है वो दाल।
0: 3-4 सीटी में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं तो दो सीटी में बना लेती हूँ।
1: हाँ, 3 सीटी में तो बन जाती है दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना 4 सीटी भी लगानी पड़ जाती है।
0: हाँ वो भी है। और चावल कितने सीटी में बनते हैं बताओ हमें
1: दीदी। मैं कुकर में चावल तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ पतीली में चावल बनते हैं हमारे घर, मतलब भगोने में, जो भगोना होता है ना।
0: हाँ,
1: उसमें चावल बनते हैं, तो
0: अच्छा,
1: मतलब उसमें तो मतलब एक भड़क आ जाती है, फिर चावल बन जाते हैं।
0: अच्छा ओके, मैं उसमें चावल बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे खराब हो जाते हैं। मैं कुकर में चावल बनाती हूँ तो फटाक 6 सीटी में चावल बन जाते हैं।
1: मुझसे तो मतलब भगोने में बहुत अच्छे चावल बनते हैं।
0: ओके, मैंने प्रयास किया था बनाने का लेकिन वो चावल तो नहीं बने, लेकिन हाँ खीर बन गई, तो मैंने उसमें मिल्क ऐड किया और कोकोनट वगैरह जो भी था घर में ड्राई फ्रूट्स वो डाले और पापा जी को खिला दिया, तो पापा ने कहा दोपहर में खीर कौन खाता है, मैंने कहा अब यही बने पापा जी तो यही खा लीजिएगा।
1: हाँ की खीर भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं खीर बहुत अच्छी बना लेती हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, कभी हमें भी खिलाइए अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना।
1: मैं जल आऊंगी आपसे मिलने के लिए और अपने हाथों से खीर बना के लेके आऊंगी, तो मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से।
0: अरे

0: प्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, थैंक यू यार। बताओ
1: दोस्त के आने का इंतजार कर रही हूँ, लाइबा कब आए और कब मैं आपके पास आऊँ।
0: ओके जल्दी से उड़ के आ जाओ, ठीक है।
1: इंतजार कर रही हूँ मैं, मतलब अब तक तो आ भी जाती लेकिन वो बिजी है ना इस टाइम पे, तो मतलब अभी नहीं आ सकती।
0: हाँ, मैं समझ सकती हूँ।
1: हाँ तभी मैं आऊंगी और खीर बना के जरूर लेके आऊंगी आपके लिए।
0: जी शुक्रिया, आपने कहा, मेरा मुंह अभी से मीठा हो गया है।
1: जी दिखा के बताना कैसी बनाती हूँ मैं।
0: बहुत अच्छा बनाते हो यार, कोई भी चीज अगर हम प्यार से बनाते हैं ना तो वो चीज बहुत अच्छी बनती है।
1: हाँ जी, मेरी सिस्टर मतलब वो जो दरख्ता है ना, वो उन्होंने खाई है मेरे हाथ की खीर, तो वो तो बहुत तारीफ कर रही थी और मैंने अम्मी के लिए भी भेजी थी।
0: अच्छा,
1: तो अम्मी भी बोल रही थी बेटा खीर बहुत अच्छी बनी है।
0: ओके तो बताएगा, हमने बहुत सारी गपशप कर ली है, अब डियर ये बताओ आप कौन सा गाना सुनोगे आज की शाम।
1: दीदी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी सुना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए।
0: अच्छा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं छोड़ के, अभी हम यहीं पर हैं, ठीक है।
1: आपको कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी और ना ही जाने दूंगी।
0: राइट, वेरी गुड, ये मोहब्बत हमेशा ऐसे ही रखो तो हम कहीं नहीं जाएंगे।
1: दीदी बिल्कुल।
0: हाँ कुछ शायरी वगैरह सुनाना चाहते हैं आप।
1: हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब शायरी बिना तो कॉल अधूरी लगती।
0: मतलब कि अफरोज कॉल करे और शायरी ना हो, ये तो अधूरा हो जाएगा। हाँ
1: हाँ फीकी फीकी लगेगी ना।
0: हाँ राइट, तो कुछ सुनाइए हमें।
1: जी जी अर्थ किया है, तलब की राह में पानी से पहले खोना पड़ता है।
0: वाह
1: वाह। पानी से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है किसी का होना पड़ता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, अमेजिंग यार, बहुत बहुत ही प्यारी लाइनें थी आपकी। एंड आप हमें ऐसे ही कॉल करती रहा कीजिए, अपनी शायरी भी सुनाती रहा कीजिए। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका फ्रूस।
1: आज मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको मतलब स्टूडियो में सुनकर, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है थी।
0: ओके खुशी तो हर संडे आने का प्रयास करती है।
1: और भी पता है, आप हर संडे आओगी ना शाम को?
0: या
1: बहुत अच्छा थी, मैं लाइबा को भी बोलूंगी, खुशी भी आने लगी है संडे को कॉल करना तो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, सब करना है कॉल, मैं इंतजार करूंगी। और अभी के लिए अपना ख्याल रखो, आराम से गाना सुनो और धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ो, ठीक है।
1: तो 10 बजे के बाद।
0: ओके चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, ये तो प्यारी सी हमारी लिसनर थी जो कि बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं, और जब हम बात करना शुरू करते हैं ना तो चुप ही नहीं होते हैं। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा अपनी बातों को विराम देते हैं और ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल करना ना भूलिएगा एवरीवन। नंबर है 9837896896।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: दोस्तों, मैं अपने वादे के अनुसार लौट कर आ चुकी हूँ आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और जो इस वक्त सफर में हैं उनकी हर मंजिल आसान हो, हर मोड़ पर खुशियों का कारबा मेहरबान हो। मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित चलिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हेलो, हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते मैम जी।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सतेंद्र बोल रहा हूँ, गांगुरेडे से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया है मैम जी, आप सुनाइए, बहुत दिनों में आज मुलाकात हुई है।
0: जी हाँ, काफी समय के बाद आज आपसे बातचीत हुई है। बताइएगा सर, आपके परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ, सब सही है।
0: जी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है। आप बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गाना सुनवा दीजिए मैम।
0: जी जी बताइए, कौन सा गीत?
1: वही जब जब मुझको पुकारा दौड़िया हूँ नदिया के नाले में।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सर की पसंद का। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी चली आऊँ नदिया किनारे। बस मैं अभी वापस आ रही हूँ, आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, अगर आप डिनर कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, और खाना भी आराम से खाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि खुशी अभी आपके साथ है।

0: आपसे बात करके।
1: जी थैंक यू, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: मैम आज मूवी का नाम है मिट्टी और सोना।
1: हाँ जी
0: मैम, उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है मारा जिसको मोहब्बत ने मारा। मैम आज के सॉन्ग में यारा सॉन्ग प्ले कर देना।
1: अच्छा ठीक है, सुनवाएंगी प्यारा सा गाना।
0: जी मैम थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी। तो चलिए विवन ये प्यारा सा गीत सुनते हैं और इसी गीत के साथ मैं लेती हूँ अब आपसे जाने की अनुमति। फिलहाल मैं मिलूँगी आपको कब, याद दिला देती हूँ, सुबह 10 बजे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए एंड हर एक टाइम को, हर एक पल को ना एंजॉय करें, हैप्पी रहें लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और लाइफ में ना टेंशन, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो सबकी लाइफ में परेशानियां होती हैं, लेकिन उस परेशानी को आपको, उस परेशानी से परेशान नहीं होना है, उस परेशानी को आपको ना मुस्कुराकर उसका सामना करना है। जब आप मुस्कुराकर सामना करेंगे ना तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा।

टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।